ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आए हैं गांव तेजा मोड़ी में और हमारे साथ यहां पर कई सारे गांव के रहने वाले हैं, वो बैठे हैं और हमारे साथ सरपंच जी भी है। और खास करके यहां पर हम आए हैं, हमारा इस गांव से संपर्क जब हुआ तो यहाँ इस गांव के एक बहुत ही हर दिल अजीज व्यक्ति है बंशीलाल सिंधु जी, उनसे हम मिले और उनसे हमने आग्रह किया कि हम आपके गांव में आना चाहते हैं। तो आज हम इस गांव में आए हैं तो बहुत सारी बातें हम इनसे करेंगे, जितने भी लोग आए हैं उन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले जो गांव के मुखिया होते हैं, जिनको गांव के बारे में पूरी जानकारी होती है, जो गांव की उन्नति के बारे में जानते हैं, अगर कोई गांव में कमी है उसके बारे में जानते हैं, तो हमारी कोशिश है रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम सरकार तक और अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाएं। अगर उन्नति हुई है तो वो भी हमें सरकार तक पहुंचानी है, अगर कोई कमी है वो भी हमें सरकार तक पहुंचानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ के सरपंच जी से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें ताकि लोग ये जाने कि हम किन से रूबरू हैं।
1: पार्थ जी, पहले तो मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं सरपंच गांव मोड़ी जी, और हमारी पंचायत दो गांव की पंचायत है, गोविंदगढ़ है जी, एक मोड़ी, वहां से मैं सरपंच हूं
0: जी।
1: और आप जो भी हमको गांव के बारे में पूछेंगे वो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं।
0: सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम किसी गांव में जाते हैं तो हम सरपंच जी से इसलिए सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि उनको गांव के बारे में सारी जानकारी रहती है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप अपने गांव के बारे में और आसपास के जो आपके गांव है, अपने लोग हैं, उनके बारे में आप हमें बताएं।
1: मेरे गांव में जी बहुत पुराना गांव है जी मेरा
0: जी,
1: और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग रहते हैं, आपस में मिलवर्तन बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ऐतिहासिक गांव होने के कारण सभी जातियों के लोग रहते हैं और जिनका आपस में बहुत ही अच्छा मिलवर्तन है, और सभी एकता से और बिल्कुल किसी भी पक्षपात के बगैर रहते हैं, और अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है।
0: तो आपकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि गांव की उन्नति होनी चाहिए। उन्नति में हम कई सारी चीजें देखते हैं, जैसे गांव में सड़कें, गांव में पानी की सुविधा। तो क्या आपके गांव में जो सड़कें हैं उनकी रखरखाव और जो जरूरतें हैं वो सरकार पूरी करती है, या अगर उसमें कोई कमी है आप वो भी हमें बता सकते हैं ताकि हम आपकी बात को और आपके गांव वालों की बात को सरकार तक पहुंचा सकें।
1: मेरे गांव में जी कम से कम भी 4 चौपेरे गांव से 7-8 सड़कें लगती हैं
0: जी,
1: सबकी हालत ठीक है तकरीबन
0: जी।
1: लेकिन एक थोड़ा उन्नति की बात ऐसे है जी, गांव में जो गोहर रास्ते हैं वो रास्ते कच्चे हैं, और उनको पक्का करवाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी और जितने भी अधिकारी हैं उनको सबके पास अपना जो भी लिखित रूप में रेजुलेशन पंचायत का डाल का सबको पहुंचा दिया है कि उनको पक्का किया जाए, क्योंकि वहां पर कुछ लोग जैसे डेरे हैं वो लोग रहते हैं, उनको आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। गोहर रास्ते मेरे गांव के तकरीबन सारे ही कच्चे हैं, और उनको पक्का करवाया जाए, ये मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ।
0: जब आप सरकार से कोई चीज मांग लेते हैं तो मुझे आशा है कि वो उन बातों पर ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि हरियाणा की जो सरकार है उसमें जो सरपंच है गाँव का, उसके पास बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं। कम से कम अगर सरपंच अपने गांव की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, आपके जो टीम है पंच और बाकी जो लोग हैं या गांव के लोग हैं उनकी तरफ से आप कोई रेजोल्यूशन या कोई प्रार्थना पत्र आप सरकार को देते हैं तो वो उस पर काम करते हैं समय समय पर?
1: सभी बहुत अच्छे तरीके से काम होता है जी, सभी पंच अच्छे तरीके से भी काम करते हैं, लेकिन जो सरकारी काम है उनमें होने में बहुत देरी लग जाती है। सरकारी काम है ना, जो जैसे हम सोचते हैं भी चलो अब रेजुलेशन दे दिया, शायद उसको होते होते बहुत टाइम लग जाता
0: है, बहुत टाइम लग जाता है।
1: मैंने बढ़ने के बाद, सरपंच बनने के बाद एक रेजुलेशन दिया था जी, जिसमें मेरे गांव में बहुत अच्छे लड़के प्लेयर हैं, और मैंने अपने गांव में स्टेडियम बनवाने के लिए एक रेगुलेशन डाल के वो एप्लीकेशन दी थी, जिसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और उसमें मेरे गांव के अंदर एक साल के अंदर 2-3 बारी टूर्नामेंट भी करवाई जाती है, जो कि एक हमारा बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मेला है कुश्ती दंगल का, वो होता है। हमारे गांव को एक स्टेडियम की बहुत ज्यादा जरूरत है जी, बच्चों को यानी वर्जिश करने के लिए भी अम्बाला जो हमारे से 20-22 किलोमीटर दूर पड़ता है वहां पर जाना पड़ता है, और स्टेडियम की एक बहुत ज्यादा डिमांड है। मेरे गांव की एक मेन डिमांड यही है भी स्टेडियम और गोहर रास्ते जो कच्चे हैं उनको पक्का किया।
0: आपने बहुत अच्छी बात की, आपने खिलाड़ियों की बात की, चाहे वो कुश्ती का हो या कबड्डी का हो। सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारे युवा खेलों के साथ जुड़ते हैं तो वो कोई अन्य गलत रास्तों पर नहीं चल पाते हैं। तो ये आपकी पहल बहुत अच्छी है, और जिस पहल पर आप चले हैं आपके सारे गांव वालों का साथ है, तो मुझे पूरी आशा है कि सरकार भी उस पर ध्यान दे और आने वाले दिनों में उसकी जो भरपाई है, जरूरत है, वो पूरी करें। आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ गाँव के बारे में, जो साफ सफाई है, इसका क्या साधन है यहाँ पे, पहला। दूसरा, क्या नल से जल हर घर में आता है या अभी भी वो पुरानी प्रथा है, हमारी जो औरतें हैं, जो लेडीज हैं, वो बहुत दूर से पानी अपने घरों में लाते हैं, उसके बारे में आप बताइए।
1: हमारे गांव में जी 2 बोर हैं जी,
0: जी,
1: और सबके घर में पानी पहुंच रहा है
0: जी, नल से जल,
1: नल से जल
0: जी।
1: और एक बोर का और रेगुलेशन तय कर दिया हुआ जी, उसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है जी, गांव के बीच में से थोड़ी ऊंचाई है और साइड में नीचा है, तो साइड में पानी जाए, यहाँ गांव के बीच में पानी जाने में थोड़ी दिक्कत हुआ, इसलिए एक बोर
0: उस इलाके के लिए करा जाए।
1: हाँ, उस इलाके के लिए एक बोर और लगवाया जाए, एक नलकूप यानी पानी पहुंचाने के लिए, उसका मैंने रेगुलेशन डाल के दे रखा है।
0: साफ सफाई के साथ हमारा जो व्यक्तित्व को साफ सुथरा रखना, जिसको हम अंग्रेजी में हाइजीन कहते हैं, पर्सनल हाइजीन कहते हैं, उसके बारे में लोग कितने जागरूक है। जैसे हमने खाना खाना है तो खाना खाने से पहले हमने हाथ धोने हैं, इसके बारे में कितनी जागरूकता है गाँव में, और खास करके जो हमारी महिलाएं हैं उनका पर्सनल हाइजीन, उसके बारे में आप अगर कुछ बता सकते हैं तो।
1: भारत जी, पहले तो लोग अनपढ़ होते थे
0: जी,
1: लेकिन आज गाँव में लोग बहुत जागरूक हैं
0: जी,
1: और बहुत पढ़े लिखे हैं, और आप तो साबुन से कह रहे हैं जी, तो शैम्पू आगे हाथ तो तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो गाँव में सबके घर हैं जी, और कोई ऐसी बात नहीं है जी, बड़ी साफ सफाई है और हरेक बंदा बड़ी साफ सफाई के साथ रह गया जी। शैम्पू के
0: सरपंच जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारा यहाँ आने का मकसद यही है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो देश है वो गांव से बनता है, और अगर गांव तरक्की करता है, गांव की सोच समझ अच्छी होती है, तो उसी में हमारे देश की तरक्की हो रही है और दिख भी रही है। मुझे ये खुशी है कि मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि इस समय मैं गांव तेजा मोडी में हूं, और जब हम यहाँ अम्बाला शहर से होते हुए आए और पूरे गाँव तक पहुंचे में, इवन इस डेरे तक जहाँ पे हम बैठे हैं, वहां तक पूरा रास्ता है और गाड़ी को चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत खुशी होती है कि जब आप अपने घर से किसी और गांव में जाते हैं, क्योंकि हम अलग अलग गांव में जाते हैं, तो हमें खुशी होती है कि लोग अपना हक सरकार से मांगते हैं, जो उनकी जरूरत है वो उनसे पूरी करवाते हैं। सरपंच जी, आप कब से हैं गाँव के सरपंच?
1: मैंने 3 साल हो गए।
0: और आगे आगे जब आप लोगों के पास जाते हैं, और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, गांव में कई बार किसी के साथ मनमुटाव होता है या घर में परिवार सदस्यों का मनमुटाव होता है, क्या ऐसे भी कोई लोग आपके पास आते हैं जो उसका समाधान आपसे चाहते हैं?
1: हाँ जी, बहुत, ये तो रोज चलता रहता है तकरीबन आजकल जी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है
0: जी,
1: वो नए नए ब्याह हुआ जी
0: जी,
1: और कई की बेचारे की लव मैरिज हुआ
0: जी,
1: और वो बस 3-4 महीने बाद थाने में पहुंच जा।
0: अच्छा,
1: फिर वहां हमारी बहुत जरूरत पड़ा जी, बस वहां तो हम जय रहे जी।
0: ये इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आमतौर पर लोग पहले इस विषय में बात नहीं करते थे, पर अब वो समय नहीं है। अब अगर दो लोगों के बीच में कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक बात सही नहीं है, तो आज चुप नहीं रहते हैं उसकी बात करते हैं। मैं इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप गांव के सरपंच है, तो सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है कि जो बात घर की है वो घर में ही रहे, तो अगर गांव में ऐसी कोई बात होती है तो आपकी भी कोशिश यही होती है कि उसका समाधान हम यही आपस में बैठ के करें, पुलिस स्टेशन या थाने में ना जाए।
1: वैसे तो जी आजकल पता क्या बात हुआ जी, गांव में समझदार लोग बहुत कम है,
0: जो पहले थाने में ही जाते हैं बाद में आपके
1: पहले पढ़े लिखे ज्यादा होंगे ना जी।
0: ठीक है,
1: पढ़े लिखे ज्यादा होने कर का थाने में पहला जहाँ जी।
0: अच्छा,
1: लेकिन निबड़ा गाँव में ही आने का।
0: एमिकेबली चले जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ अपने गाँव की तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं ताकि गांव और तरक्की करे, जैसे आपने स्टेडियम की बात की, जैसे आपने उन रस्तों की बात की जो डेरों की तरफ जाते हैं, वो तो आपने, कोई और ऐसी बात या अपने जो आपके साथी है गांव के उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं तो अपने गांव के बारे में यही कहना चाहूंगा जी, बहुत अच्छे लोग हैं
0: जी,
1: और आपसे मिलकर हाँ जी सारे, और सारे नु यही मेरा तो संदेश है जी, अगे वास्ता भी सब पार्टियां नू साइड में रखकर पार्टियां पूर्तियां ने कुछ नहीं करना जी, सबने आपसो मिल वर्तना बढ़िया रखो और अच्छे तरीके के रहो, भाईचारा वरतो, कोई जाति धर्म मेरा वगैरह कुछ ना वरतो, ये चीजा जो
0: इंसानियत को सबसे आगे रखो,
1: इंसानियत को आगे
0: जी
1: यही कहना चाहूंगा जी। मैं तो गुरबाणी का फरमान है जी, अब अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, तो उस गुरबाणी के अनुसार मैं तो कहूंगा जीवन जियो और बढ़िया तरीके कर।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और आपकी बात हमारे श्रोताओं तक आपने पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव तेजा मोड़ी से हम FM 90.0 रेडियो वितस्ता से आज आप सभी श्रोताओं से मुखातिब है और हम आज कई सारे लोगों से बातचीत करेंगे, युवाओं से भी बात करेंगे, उनके दिल की बात भी जानेंगे, और इस समय हमारे पास जो स्रोत है जिसके माध्यम से हम इस गांव में आए हैं वो है बंशीलाल संधू, उनसे बात करेंगे। बंशीलाल जी आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि
2: आपका भी स्वागत है जी आने का,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप अपने गांव के साथियों के बारे में बताएं और आपके गांव में आप किस तरीके से एकजुट रहते हैं, किस तरीके से अपने त्योहार है कैसे मनाते हैं, ताकि सारे जो हमारे सुनने वाले हैं वो आपकी बात को समझ पाए।
2: यहाँ देसी का मही सारा
0: जी,
2: बस तुम्हारा दो लड्डू उसको दे दिए, हमारा बर्फी दे जाएगा और कोई उसको लेते थे उधर बन रही है, प्यार हो जाए तो क्या
0: जी,
2: बनना जरूर हो चाहे कुछ आओ चाहे सवारियां बननी पड़ो, बननी पड़ा ना
0: आप
2: समय।
0: अब आप अपने साथियों के बारे में और अपने गांव के बारे में बताइए, किस तरीके से आप अपने त्योहार मनाते हैं मिलजुल के?
2: इनका पूरा प्यार है अपना, हाँ जो हिंदू है मुसलमान भी आपस में मनाते हैं, चाहे सिख भाई या गुरुद्वारे में सब जाते हैं
0: जी,
2: कोई है साझा काम करते हैं।
0: आपके गाँव में खास बात क्या है?
2: दिवाली की कुश्तियाँ बहुत तगड़ी
0: जी,
2: हाँ ये बहुत खेड़े बादशाह की है, नगर खेड़े की।
0: सरपंच जी ने अभी बात की कुश्ती की और कबड्डी की,
2: हाँ।
0: उसके बारे में आप बताएं, आप किस तरीके से आप इसको आयोजन कैसे करते हैं?
2: बड़े अच्छे ढंग से लगा जी, तो बहुत इंटरनेशनल गेम चल गई।
0: अच्छा,
2: हाँ नंबर एक चला कुश्ती,
0: तो सरकार का भी उसमें सहयोग होता है?
2: सरकार का कुछ नहीं।
0: अच्छा, वो आपस में आप मिलजुल के?
2: हाँ आपस में कराएंगे।
0: ठीक है, और जो आप FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता सुनते हैं उसके बारे में कुछ कहें और हमारी श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
2: नहीं प्रोग्राम अच्छे हैं, सब समझाने वाली बात है, जो तड़की आवा इतवार को सवेरे 7 बजे हरियाणवी प्रोग्राम है, धाकड़ा नहीं,
0: हाँ न्याय धाकड़,
2: हाँ न्याय धाकड़ बड़ी अच्छे प्रोग्राम पेश कराए रागणियां लावा
0: जी,
2: बट ठीक है कुल मिलाएगा प्रोग्राम अच्छे है।
0: न्याय धाकड़ के लिए कोई संदेश?
2: बस संदेश क्या, जुग जुग जियो अपनी अच्छी जिंदगी जियो, दुनिया जियो एन खुश लगती जियो, बड़ी खुशी से कहती कहते भी लंबी उम्र हो पड़े आराम मंजे वगैरह लंबी उम्र भी जाएगा एन जियो खुला।
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
2: ठीक है
0: मंशलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: राहुल तेजा मोड़ी से, मैं भारत सोपोरी और हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं और अब हम बात करेंगे बलविंदर जी से। बलविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आपका बहुत यहाँ काम में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज यहाँ पे आए हैं, हमारा मकसद है कि हम आप लोगों से बात करें और आप लोगों की बात रेडियो के माध्यम से सरकार तक तो पहुँचाएंगे ही और साथ में जितने भी हमारे आस पास के गाँव है जहाँ हमारा रेडियो सुना जाता है तो वहां पर भी आपकी बात जाए, ताकि अगर यहाँ कोई अच्छी बात है तो हमें अच्छी बात को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहे। आप अपना परिचय दें, आपको गांव में किस नाम से जाना जाता है और उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं।
1: मेरा नाम बलविंदर सिंह संधू, उसको के नाम से जानते हैं
0: जी।
1: और हमारी समस्या है, सरपंच साहब ने सारी समस्याएं आपको बता दी,
0: सीलाल
1: जी ने बता दी
0: जी।
1: चलो, हमें एक समस्या थोड़ी है, पिपराड़ी वाली जमीन यहाँ पे सैकड़ों एकड़ है
0: जी,
1: जिम्मेदार हैं छत्ती बरादरी के जिम्मेदार, हरिजन भी, जाट भी, शर्मा जी भी, कहार भी, सारे तरह के सैनी भी, सारे तरह के खेती करते। समस्या उनकी यही है जो धुएं वाली, उसका कोई सलूशन नहीं जिम्मेदार का।
0: नहीं, मैं एक चीज ये आपसे जानना चाहूंगा, पराली जो पराली जो खेत में है, आप उसको जब जलाते हैं तो उस धुएं से परेशानी होती है या आप उसको जलाना नहीं चाहते?
1: जलाना नहीं चाहते।
0: गवर्नमेंट तो अभी जैसे हमने भी कुछ समय पहले पढ़ा था कि सरकार ने कुछ ऐसा समाधान किया है कि आप उस पराली को काट के उसके वो गड्ढे बना दे, और क्या ऐसी सुविधा सरकार की तरफ से है या नहीं है? तो वो जो गटर बना लेते हैं पराली के, वो क्या हम जो गांव के लोग अपने खर्चे से करते हैं, क्या करते हैं?
1: अपने खर्चे से करते हैं सर, ये तो नहीं उठाते
0: हैं। अच्छा,
1: नहीं है
0: क्योंकि
1: जो कणक बोने का टाइम हो, कणक बोने का टाइम हो, ये सियाने कहते हैं भी सिर्ख जाते हैं, लेट हो जाते हैं।
0: ठीक है,
1: कणक बोते हैं
0: ठीक है,
1: तो इसका सोल्यूशन तो कुछ कुछ करना पड़ेगा।
0: यानी कि अगर पराली कट गई तो उसको जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए ताकि खेत खाली हो जाए, आप अगली फसल को लगाए। पर एक तरीका ये भी है कि जो पराली है एक मशीन से उसको काटा जाता है तो वो खेत में ही आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है, उसके एक तरीके से खाद बन जाती है। फिर जब आप उसको क्या बोलते हैं, सुपर सीडर, तो जब उसमें ट्रैक्टर आप चलाते हैं तो वो उसमें मिट्टी में मिल जाता है, तो क्या वो समाधान सही नहीं है?
1: समाधान तो है जब उसको बहाई करके रोनी कर देते हैं, फिर खेतों में जब वो देते हैं उसको कीड़ा लग जाता है फसल में नीचे।
0: यानी कि आज के डेट में जैसे सरकारें कहती हैं कि लोग या जो जमींदार है वो जानबूझ के पराली जलाते हैं, तो आप लोगों का कहना है कि आप जलाना नहीं चाहते?
1: जानबूझ के कोई नहीं जलाता,
0: ठीक है,
1: सोल्यूशन नहीं मिला है। जमीन सैकड़ों एकड़ जमीन है, 1500-1600 वोट रहे यहाँ
0: जी,
1: और सैकड़ों एकड़ जमीन है, 3600 किला जमीन का है
0: जी जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात जरूर पहुँचाना चाहता हूँ कि जितने भी ग्रामवासी है या जो जमींदार है या जो खेतीबाड़ी करते हैं, वो चाहते हैं कि हम पराली को ना जलाएं, ताकि हम वातावरण को भी शुद्ध रखें, किसी और को सेहत की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जब पराली जलती है तो धुएं से बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। पर इनका ये कहना है कि हम सरकार से अनुरोध ये करते हैं कि सरकार हमें कोई समाधान दे ताकि पराली का जो प्रबंधन है वो अच्छी तरीके से हो, और ताकि उनकी खेत जल्दी से जल्दी खाली की जाए ताकि वो अगले फसल के लिए खेत को तैयार करें। आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अभी जैसे आप नए युग के हिसाब से जो मशीनें आई हैं खेती में, एक समय था जब सिर्फ हम हल जोत के खेती करते थे, तो आज के समय में आप कौन कौन सी मशीनें यूज करते हैं जिससे आप अपनी पैदावार को बढ़ाते
1: हैं? मशीनीकरण तो बहुत हुआ है, तो मानना पड़ेगा। पहले हल चलाते थे लोग
0: जी
1: सारा सारा दिन
0: जी,
1: तो घंटों वाला काम मिनटों में वो तो होता है, जो है तरक्की की साइंस
0: जी। तो गांव में जब लोग पढ़ लिख जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो डिग्री भी करते हैं, इंजीनियरिंग भी करते हैं, बट वो अपनी खेती के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो सब्जी के काम करते हैं या जो जीरी या कनक की का काम करते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे अपने परिवार को, अपने समाज को खेती के साथ जोड़े रखे?
1: सारे गाँव में सभी जातियों ने अपने बच्चे जुड़े हुए हैं जैसी थे
0: जी,
1: और कोई काम तो ज्यादा तो बिजनेस में होता नहीं, कुछ है लोग जो प्रॉपर्टी डिलीवरी का भी काम करते हैं, और भी दर्जी भी काम करते हैं, बिखेरे हैं
0: जी,
1: सारे तरह के काम करते हैं।
0: जो आसपास के गांव हैं जहां तक हमारे रेडियो की आवाज जाती है, उन युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं?
1: खेती हमारा धंधा है
0: जी,
1: इसके साथ जुड़े हुए हैं। यही अनुरोध है अगले बच्चों को, इसे बगैर कुछ नहीं। सारे काम बंद हो गए थे जब वो आया था कोरोना, तो ये एक धंधा था जो चलता था।
0: वो एक्चुअली विश्व भर की एक परेशानी थी, पर हमारे देश ने, मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश ने उस कोरोना को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला, हम सबको इंजेक्शंस दिए, तो हमारे देश का इतना नुकसान नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलविंदर जी, आपने हमसे बात की और हमारे श्रोताओं से बात की।
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अम्बाला तक पहुँचे।
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अम्बाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
3: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
2: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
4: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
0: गांव तेजा मोड़ी से हम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर बात कर रहे हैं और यहाँ के गांव में आए हैं और सभी से बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे हाकम सिंह जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
5: स्वागत है जी।
0: आपसे जानना चाहेंगे कि आपके गांव में जो वातावरण है, जो साफ सफाई है, जो पानी का घरों में आना, उसके बारे में आप बताएं। और अगर आपके पास कोई और भी मन में कोई बात है जो आप सभी श्रोताओं को कहना चाहते हैं, वो भी कह दीजिए।
6: सबसे बड़ी समस्या यहाँ आवारा डंगरों की है
0: जी।
6: आवारा डंगर बहुत हैं, इसका सलूशन होना चाहिए था
0: जी।
6: ये बहुत नुकसान कर रहे हैं, फसलों भी उजाड़ रहे हैं, ट्रैफिक को भी परेशान कर रहे हैं, आने वाले बंदे को टक्कर भी मारते हैं, फसलों को भी जाड़ते हैं
0: जी।
6: इनकी रखी करनी बहुत दुखता है।
0: तो क्या ऐसा नहीं है कि गांव में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिनके वो डंगर है वो उनको अपने पास बांध के रखते हैं या खुले छोड़ देते
6: हैं? पे छोड़ देंगे कोई
1: आवारा।
0: अच्छा, जो किसी और गांव से
6: गड्डियां छोड़ के चले जाए,
0: तो इसका क्या समाधान हो सकता है?
6: ये यहाँ का कोई गौशाला वगैरह का होना चाहिए जरूर।
0: अच्छा, तो क्या आप लोगों ने अपने सरपंच जी को इस तरीके का कोई रेजोल्यूशन सरकार को देने की बात करी है, ताकि वो आप लोगों की ओर से सरकार को कहेंगे कि हमारे गांव में ये समस्या है?
6: यहाँ थोड़ी दूरी पर है गौशाला खुली, वहाँ पे लेके जाते हैं, वापस कर लेते हैं, लेते नहीं है।
0: अच्छा,
6: कहते हमारे पास तो इसका खर्चा नहीं पुगता, हम कहाँ से रखेंगे उनको?
0: उनको वहाँ कुछ पैसे देने होते थे, अब ऐसा सिस्टम है कि नहीं?
6: पैसे भी लेते हैं, फिर भी हम वहाँ इस दरवाजे से छोड़ेंगे, दूसरे दरवाजे निकाल देंगे, अगले दिन फिर हमारे काम में खड़े हुए।
0: अब आप यही जो बात कहना चाहते हैं सरकार से, आप वो एक बार फिर कहिए, ताकि हम कोशिश ये कर सकते हैं कि आपकी बात को सरकार तक पहुंचा।
6: हमारे पास से इसके पैसे भी ले लेते हैं
0: जी,
6: 1100 किसी की पर्ची काटते हैं
0: जी,
6: उल्टा हम बोलते हैं कि इसके बारे में तोड़ी भी दो, हमारे को घास भी दो, इस दरवाजे से छोड़ते हैं, दूसरे दरवाजे निकाल देते हैं, अगले दिन फिर हमारे पास स्त्री खड़े।
0: यानी कि
6: हमारे को आवारा जानवर खेत में नील गए, बहुत नुकसान है, अनुरोध करते हैं भी हमारा ये समाधान जरूर करें।
0: देखिए, हम भी इसीलिए आए हैं यहाँ पर ये जानने के लिए कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो शायद सरकार तक, आपके गांव के जो मुखिया होते हैं उनसे तो पहुंचती है, पर आवाज की दुनिया एक अलग एक माध्यम है। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ आके आप सबसे बात करें और उस बात को सरकार तक पहुंचाने
6: के द्वारा बहुत धन्यवाद आप वहां से पूछा हो बात।
0: और यहाँ आपके गांव में बंशीलाल संधू जी हैं, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि जहाँ ये नहीं हो वहां पर कुछ आनंद नहीं आता,
6: तो रौनक ही मिल रहा है जी हमारे गांव पर।
0: क्या कहना चाहेंगे, क्या
6: बहुत खुश मिजाज मिलता है जहाँ पे चार बंदे में बैठता है
1: कलाकार।
0: हम आपके गांव में इनके माध्यम से आए क्योंकि इन्होंने हमसे बात की, तो हमने इच्छा जाहिर की कि हम आपके गांव में आएंगे, तो आज हम आप सबके पास यहाँ।
6: इसका बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपका हाकम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात कहने के लिए।
4: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
0: एक बार फिर मैं भारत सोपोरी, गांव तेजा मोड़ी से हम इस गांव में आए हैं और अभी हमने कुछ लोगों से बात की। अब हम यहाँ के जो युवा है उनसे बात करेंगे, उनके दृष्टिकोण से जानेंगे कि हमारा जो गांव है वो किस ओर चल रहा है, कितनी तरक्की गांव में हो रही है और कितनी तरक्की आने वाले दिनों में हमारे देश की तो है। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए अपना परिचय पहले दें।
5: आपका भी स्वागत है सर।
0: धन्यवाद।
5: मेरा नाम रमनदीप सिंह है, मैं यहीं तेजा मोड़ी गांव का रहने वाला हूं और मैंने इंजीनियरिंग की हुई है डिप्लोमा और बीटेक करके। मैं यमुनानगर इज़जे कंपनी में जॉब करता हूं।
0: जी, तो आप हर दिन तेजा मोड़ी गांव से यमुनानगर जाते हैं और शाम को वापस आते हैं या वहीं रहते हैं?
5: नहीं, मैं पहले रहता भी था, मेरी ड्यूटी के हिसाब से जैसे नाइट होती है तो मैं आ जाता हूँ। मतलब डेली अप डाउन भी करता हूँ।
0: तो आपने पढ़ाई कहाँ से की है?
5: अम्बाड़ा सिटी से ही करी है सर।
0: अच्छा।
5: किया और यमुनानगर जगाधरी से बीटेक किया।
0: बीटेक किया हुआ है। आपसे हम जानना चाहेंगे, ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा होते हैं।
5: जी,
0: आप मुझे ये बताए कि आपके गाँव में सारी सुविधाएं हैं, जिस सुविधा के साथ अपने जीवन यापन आप अच्छे से कर पाते हैं?
5: जी, मेरे लिए हमने जो जैसे हमने अपना जो बचपन गुजारा है और जो देखते आए हैं, हमारा सब कुछ सही है। मतलब हमें इतनी दिक्कतें यहाँ गांव के हिसाब से इतनी हुई नहीं, जैसे लाइट की, पानी की या आने जाने की समस्या, मतलब इतनी कोई इशू हुआ नहीं। लेकिन मेरा जो मेन यहाँ अभी जो देखता आ रहा हूँ ना, जो आजकल के बच्चे हैं, तो मेरा तो मेन यही है कि जैसे आजकल सोशल मीडिया ज्यादा हो गया है, तो उसको देख के सोशल मीडिया को ना अब हर घर में एक नहीं, दो दो, तीन तीन, सब पे स्मार्टफोन है। तो बच्चे खेल कूदने की बजाय, फिजिकली एक्टिविटी की बजाय, अपने मोबाइलों में वही गेम में खेलना, सोशल मीडिया चलाना, वही आजकल इंस्टाग्राम रील वगैरह है, मतलब ज्यादा मैक्सिमम टाइम अपना उसी पे स्पेंड करते हैं।
0: तो क्या आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर ज्यादा समय गुजारने से हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है और उनका जो ध्यान एजुकेशन पर या अपने काम पे होना चाहिए उससे वो भटक रहे हैं?
5: जी, अब देखो सर, हर चीज का नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। अब सोशल मीडिया का, इंटरनेट का फायदा भी है अगर उसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए। अगर हम उसको पढ़ाई के माध्यम से देखें तो उसका हमें बहुत यूज भी है, जो हमें चीजें नहीं पता लगती थी वो हम आजकल ये नेट से देख लेते हैं, गूगल सर्च कर लेते हैं, बहुत चीजें हैं। लेकिन उसका नुकसान भी है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, रिले है या गेमिंग है, उसपे मतलब फिजिकली एक्टिविटी ना करने की बजाय बच्चे सारे अपने घर में बैठ के इनडोर
0: गेम्स ही खेलते हैं। हाँ। जिससे उनके सेहत पर असर पड़ता है। आपको जहाँ भी मौका मिलता है, जैसे गांव में जब आप होते हैं, तो क्या आप इस तरीके के बातें अपने जो युवा साथी हैं या बच्चे हैं उनको ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमें जो पढ़ाई करनी है उसकी दिशा वो होनी चाहिए कि जो हम पढ़ाई भी करें और घर के काम भी करें और फिजिकल एक्टिविटी भी करें? तो क्या ऐसा मौका कभी मिलता है?
5: कभी कभार जो जैसे मिल जाते हैं तो साथी मिलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं जो खेलते हैं, कभी जैसे चले गए। अब मैं आपको बताया ना, सबसे मेन तो यही है, जब हम बच्चे थे, बचपन बिताया यहाँ पर, बहुत खेलते थे हम, साथ में खेले हैं। लेकिन अभी जब बाहर निकल के देखते हैं ना, तो कोई खेलता हुआ ही नहीं मिलता। और दूसरा, जो हमारे सरपंच साहब ने पहले बताया भी है कि यहाँ स्टेडियम ही नहीं है। मेन तो यही है कि जब कुछ खेलने का साधन ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो वहाँ खेलेंगे कैसे?
0: कैसे खेलेंगे
5: बच्चे? मतलब बहुत कम आज के टाइम में बाहर खेलते हैं, सोशल मीडिया पे, नेट पे, मोबाइल पे ज्यादा लगे हैं। मतलब बच्चों को अपना फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी चाहिए। और जो आपने मेरे को पहले क्वेश्चन किया उस पे मैं वापिस आऊंगा, ये है कि जैसे हम मिलते हैं, अब मैं यही कहता हूँ कि जैसे जो हमने दिक्कतें देखी हैं कि किस टाइप की पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अपने यहीं पे रह के जो हम और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि जिससे और आगे आने वाले बच्चों को दिक्कत ना आए, तो वो उसके रिलेटेड हम बात कर लेते हैं कभी कभार।
0: आपसे जानना चाहूंगा कि जो गांव तेजा मोड़ी है, इसमें एक युवा होने के नाते आप आने वाले दिनों में क्या बदलाव देखना चाहेंगे, जो सरकार की ओर से हो, जो जिससे यहाँ के बच्चे और आगे बढ़े, तरक्की करें? क्योंकि अगर गांव तरक्की करता है तो हमारा देश आगे बढ़ता है।
5: मेनली तो सर यही है कि जो जैसे बच्चे आजकल देख के, बड़ों को ही देख के, छोटे बच्चे हैं जो बचपन में जैसा देखेंगे वैसे ही वो बड़ा होके वो करें।
0: जी।
5: अगर नशा और ये इन चीजों से हटके पढ़ाई पे, खेल कूद पे ज्यादा ध्यान होएगा, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। अगर वो देखते आ रहे हैं अपने ही बड़ों को जो नशे करते हैं खेल कूद नहीं
7: उसका
5: करते,
7: असर
5: तो ऑटोमेटिक वो उनको देख के ही सीखते हैं।
7: मैं आपके सरपंच जी का साधुवाद देता हूं क्योंकि वो खेल कूद को यहाँ बढ़ावा देते हैं। जब युवा खेल कूद की तरफ जाते हैं तो नशे और बाकी चीजों की तरफ उनका ध्यान कम जाता है और फिजिकली वो स्ट्रांग रहते हैं। तो अंत में आप हमारे अम्बाला के सभी युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं?
5: सर यही संदेश है कि खेलो कूदो, बढ़िया पढ़ाई करो, नशे से और इससे दूर रहो और देश की तरक्की करो।
7: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही ये जानना चाहूंगा कि भारत सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है वो ये चाहती है ये पता करना कि लोगों के घरों में नल से जल आता है और जो पर्सनल हाइजीन है वो गांव में कितना होता है और खास करके जो फीमेल्स है उनकी पर्सनल हाइजीन के लिए क्या गांव में वो सारी सुविधाएं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
5: अब तो सर पिछले 10-15 साल से मतलब पढ़े लिखे हैं सब, आजकल सोशल मीडिया पे ऑटोमेटिक अगर कोई नहीं भी बता रहा तो देख लेते हैं कि ये चीज करनी चाहिए, ये ठीक है ये गलत है। तो हाइजीन और पर्सनल हाइजीन तो अपने आप ही मेंटेन कर रहे हैं और गांव में ठीक ठाक है, सब बढ़िया है।
7: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने युवाओं के दृष्टिकोण से बात रखी। और जब हम बड़े लोगों से बात करते हैं वो हमें दिशा निर्देश देते हैं और जब युवा उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करते हैं तो वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात होती है। और बड़ों का आदर और सत्कार करना हमारी संस्कृति में है
5: जी,
7: हमारी सभ्यता में है। जो बड़ों के दिए हुए संस्कार और उनका हम सम्मान करते हैं तो तब तक हमारी उन्नति चलती रहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: आपका भी धन्यवाद।
2: वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
7: इसी श्रृंखला में हम बात अब करते हैं गुरजीत सिंह जी से। और गुरजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के इस कार्यक्रम आओ गांव चले में। हम गांव तेजा मोड़ी में आए हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ प्रश्न। सबसे पहले आप अपना परिचय दें।
8: नमस्कार सर, मेरा नाम गुरजीत सिंह और मैं मोड़ी गांव का निवासी हूं। मेरी 30+ एज होगी
7: जी। आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं?
8: नहीं, मैं जॉब और खेती दोनों
7: करते हैं। और जो खेती बाड़ी आप करते हैं, जब युवा खेती के साथ जुड़ते हैं तो कितना सरल हो गया है खेती बाड़ी करना पहले के कंपैरिजन में?
8: सर सरल तो हो ही गया है क्योंकि पहले तो काफी सारा दिन खेत में रहना पड़ता है
7: जी जी।
8: अब तो खेत में हफ्ते में एक दो या दो दिन चक्कर लगा लो तब भी अपनी खेती हो जाती है। अब मैं हफ्ते में एक दिन चक्कर लगाता हूँ संडे वाले दिन और खेत में,
7: यानी कि मशीनी दौर आने के साथ साथ। तो यहाँ पर केवल जीरी और कनक होती है या सब्जियों का भी?
8: ये जो हमारा इलाका है इसमें मैक्सिमम जीरी और कनक ही करते हैं
7: जी,
8: इसमें और सब्जी वगैरह कुछ नहीं।
7: अच्छा, तो कई जगहों पर हम देखते हैं हरियाणा में कि लोगों ने अब जो खेती में धान की और गेहूं की खेती करते थे अब उन्होंने अलग अलग सब्जियों का काम भी शुरू किया। अभी इस गांव में ऐसा नहीं है?
8: नहीं, क्योंकि ये हमारा थोड़ा लकर एरिया है जी, जो हमसे 2-3 किलोमीटर आगे चले जाओ दड़ाना साइड, यहाँ पे खेती भी सिर्फ सब्जी की होती है, वहाँ पे जीरी कनक नहीं हो सकते वो।
7: अच्छा,
8: तो गन्ना और ये सब्जी सारी गोभी वगैरह मिर्चा सब यही लगी मिलेंगे।
7: अच्छा,
8: जो हमारा ये एरिया है थोड़ा सा इसमें सिर्फ जीरी और कनक ही करते हैं।
7: आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे ताकि वो प्रेरित हो आपकी तरफ, वो आपकी बात पर वो ध्यान दें? क्या संदेश आप देना चाहेंगे युवाओं को ताकि वो अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका योगदान क्या होना चाहिए?
8: सर योगदान तो सर देखो स्टार्टिंग से उनके माँ बाप पे डिपेंड करते हैं, नींव वहीं से रखी जाती है। अगर माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी पढ़ाई कराएंगे
7: जी,
8: तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे रास्ते पे चलेगा
7: जी।
8: अच्छी पढ़ाई के बाद वो अच्छा कहीं जॉब भी लगेगा, एग्जाम भी करेगा
7: अपने घर के लिए भी,
8: घर के लिए भी अपना। सबसे पहले उसके माँ बाप पे डिपेंड है, वो अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको अच्छी पढ़ाई कराएं और फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए उसकी थोड़ा निगरानी भी रखें। एक उम्र ऐसी आती है कि बच्चा वहाँ पे थोड़ा हिल डुल जाता है, अपने फर्जों से लगा लो, किसी नशे में ना पड़ जाए, किसी गलत संगति में ना पड़ जाए, तो माँ बाप उसके देखे, उसकी देखभाल करे, थोड़ा फोन से उनको थोड़ा हटाए, ज्यादा टाइम फोन पे भी ना यूज करने दें, फोन का भी एक लिमिट रखे, खेलने की भी लिमिट रखे। ये ज्यादातर मैक्सिमम के माँ बाप पे डिपेंड करता है, अगर घर का माहौल सही है तो बच्चा ऑटोमेटिकली सही है।
7: अगर आपको गांव में कहीं मौका मिलता है तो जो युवा होते हैं क्या आप उनको कुछ कहने की कोशिश करते हैं कि उनका जो
0: दिनचर्या है उनका, जो पढ़ाई की तरफ रुझान है वो होना चाहिए।
8: हाँ, मैक्सिमम जो छोटे बच्चे हैं वो मेरे साथ काफी लगाव, वैसे मुझे बच्चों के साथ लगाव है, जितने मेरे अटैच में बच्चे रहते हैं वो, उनको तो मैं हमेशा सही गाइड ही करता हूँ कि क्या करना है, कितनी देर फोन, मेरे पास कोई बच्चा फोन नहीं देखता, जितनी देर मेरे पास रहेंगे वो खेलेंगे मेरे साथ
0: जी।
8: और मैं उनको यही कहता हूँ कि फोन कम से कम देखो जितना देख सकते हो, बाकी खेल कूद में रहो, फोन से उनका माइंड तो तेज हो जाएगा, पर उनका जो फिजिकल
0: एक्टिविटी
8: बिल्कुल लड़ा है, वो छोटे छोटे छोटा भी काम भी नहीं कर सकते, या थक जाते हैं लगा लो या भाग नहीं सकते। हम मान लो जितना हम भाग लेंगे 30-35+ में, वो भी उतना नहीं भाग सकते, वो भी अभी 10-12 साल के मान लो कुछ भी, क्योंकि वो फोन ही देख रहे हैं सारा दिन, फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे। मैं तो ये चाह रहा हूँ वो फिजिकल एक्टिविटी में खेलें कूदें, तो थोड़ा फोन कम करें।
0: युवा होने के नाते और गाँव की जो आपके मुखिया हैं और सरकार से, आप कोई कुछ ऐसी बात रखना चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं कि आपके गाँव में हो, ताकि आपका गाँव और आगे बढ़े?
8: कोई आसपास का, जैसे हमारे गांव के 10-12 किलोमीटर के आसपास कोई इंस्टीट्यूट किसी तरीके का कोर्स टाइप, कोई ऐसा कुछ सरकार बना के दे,
0: जैसे ITI या इस तरीके का,
8: कोई बाला जाना पड़ता है, बाला के लिए हमारे पास साधन कम है, बस दो ही टाइम आती है, एक सुबह और एक शाम को, बाकी तो ऑटो वगैरह तो लोग तो साधन हो गए, पहले टाइम में थोड़ा इसी का साधन नहीं थे, और बंदे के पास हमने एक्टिवा हो गई है, लेके चला जाता है, माँ बाप भी छोड़ देते हैं बच्चों को।
0: आपका कनेक्शन अम्बाला शहर से रहता है या अम्बाला छावनी से?
8: शहर से सारे काम अम्बाला।
0: और अंत में आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं?
8: बस यही संदेश है सर, आप की सेवा करो
0: जी,
8: और नशे से दूर रहें सर, और अच्छी पढ़ाई करें, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे गांव में आके, और ये कार्यक्रम आओ गांव चलें हमने तैयार किया, और इसमें मेरा सहयोग राहुल ने दिया, और सभी गाँव वालों को, और खास करके हम शुक्रगुजार हैं सरपंच जी के और बंशीलाल संधू जी के, और हम उम्मीद करेंगे हम अगली बार फिर आएंगे, कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे और उनकी भी दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में ये आपसे जानना चाहूंगा, जो एक प्रथा पहले होती थी कि जब गांव पानी की जरूरत होती तो गाँव की महिलाएं मटका लेके कहीं दूर से पानी ले आती थी, तो क्या उस प्रथा से हमारी महिलाओं को मतलब आजादी मिली है कि नहीं मिली?
8: वो तो सर 100% आजादी उससे, वो तो सर 10-12 साल से कहीं भी कोई भी घर पे पानी लेने नहीं गया कहीं बाहर,
0: और ना शौच करने कोई बाहर जाता है,
8: वो सर सबके घर में लैटरिन बन चुकी है सर 10 साल से, और सब अपने घर में सफाई।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हम आप सभी गाँव वालों को शुभकामनाएं देते हैं, ये गाँव ऐसे ही तरक्की करे, उन्नति करे, और हम एक बार फिर आए और ये गांव इससे भी आगे बढ़ा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

बहनों भाइयों, 50 के दशक में गायकी की दुनिया में एक खूबसूरत नाम ने जन्म लिया। शानदार जानदार भारतीय गायिका के तौर पर सुमन कल्याणपुर की सुरीली आवाज ने फिल्मी दुनिया में जब कदम रखा तो लगभग सभी संगीतकारों के चेहरों पे इत्मीनान के साथ साथ खुशी की लहर दौड़ गई।

लता मंगेशकर की आवाज से मिलती जुलती आवाज सुमन कल्याणपुर ने सन 1956 में फिल्म मंगू के नाम से अपने करियर की शुरुआत की। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी सन 1937 को ढाका, अब बांग्लादेश में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने सन 1958 में रामानंद कल्याणपुर से शादी की। आपने अपनी गायकी की शुरुआत कर सन 1960 और सन 1970 के दशक में एक लोकप्रिय गायिका के तौर पे अपने आप को साबित किया।

उनकी आवाज लता मंगेशकर जैसी होने की वजह से कई ऐसे मौके भी आए कि संगीतकारों ने उन्हें लता मंगेशकर के विकल्प के तौर पे उनकी आवाज का इस्तेमाल किया।

एक ऐसा मौका आया था जब सुमन कल्याणपुर ने ए मेरे वतन के लोगों गीत की रिहर्सल की थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान उनसे ये गीत ले लिया गया था, जिसका मलाल सुमन कल्याणपुर को सारी जिंदगी रहा।

0: सुमन कल्याणपुर को मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त, आशा भोसले, हेमंत कुमार, किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और शमशाद बेगम के साथ हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे युग के लोकप्रिय गायकों में से एक माना जाता है।
1: तुमसे

उन्होंने सन 1960 के दशक में मोहम्मद रफी के साथ 140 से ज्यादा दो गाने गाए। सुमन कल्याणपुर की दो गानों की एक झलक।

जब मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था और लता ने रफी के साथ गाने से इनकार किया था, तब मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोर्टल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों कुछ ना कुछ भरपाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो विद स्टार, हम सफर जिंदगी का।
6: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 8। आज का शीर्षक है, रिश्ते सुलझाने हैं तो मतभेद सुलझाने जरूरी। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता RJ किरनी। यह है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
5: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, लेकर आई हूं पॉडकास्ट विद किरनी का एक और नया एपिसोड। जिंदगी के सफर में रिश्ते सबसे खूबसूरत साथी होते हैं, लेकिन इन रिश्तों को बनाए रखना और निभाना ये भी एक कला है। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि अगर मतभेद हो जाए तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा, लेकिन असल में मतभेद रिश्ते तोड़ते नहीं, अगर हम उन्हें समझाने का हौसला रखें। आज बात होगी उन्हीं छोटी छोटी बातों की जो कल किसी रिश्तेदार की खामोशी बन जाती है, उन उलझनों की जिनके हाल हम ढूंढ लेते हैं, रिश्ता और गहरा और मजबूत हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक दिल से निकला हुआ सफर। रिश्ता निभाना है तो मतभेद सुलझाना होगा। झगड़े और बहस हर रिश्ते में होते हैं, पर ये पूरी तौर पर ही हो तो अच्छा है। विवाद को लंबा खींचकर रिश्ते खराब होने की वजह ना बनने दे। जिंदगी में रिश्ते हमें प्यार, समर्थन और खुशी देते हैं, लेकिन वे बहुत नाजुक भी होते हैं, उन्हें सहज कर रखना बहुत जरूरी है। हालांकि कई बार छोटी छोटी बातों और बहस की वजह से रिश्तों में दरार पड़ जाती है और वे टूटने की कगार पर पहुँच जाते हैं। ऐसे में अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि रिश्ते का पवित्र धागा टूटने के बजाय मजबूत बना रहे। जिद पर अड़ने से बचे। रिश्ते में अपनी बात मनवाने की जिद अधिकतर झगड़ों को खत्म नहीं होने देती है। इस जिद की वजह से झगड़े के बाद बातें और बिगड़ जाती हैं। ऐसे में झगड़े के बाद जिद पर अड़ने की आदत से बचना होगा, ताकि माहौल को शांति से ठीक किया जा सके। माफी मांगना व क्षमा करना। अगर झगड़े के बाद दोनों ओर से बातचीत बंद है तो पहल करने की कोशिश करें। अगर आपकी गलती है तो ईमानदारी से माफी मांगे। अगर आपके साथी ने गलती की है और वह माफी मांग रहे हैं, तो बात बुलाने का बड़कपन दिखाए। वह माफी ना भी मांगे तो भी अपने पहल कर सकते हैं। कुछ प्रयास करें। झगड़े के बाद थोड़ी कोशिश आप भी करें, हो सके तो मनाने के लिए कुछ गतिविधियों जैसे घूमना, मूवी देखना या कोई फन एक्टिविटी करना प्लान करें, ताकि साथ में अच्छा समय बिताया जा सके। अच्छे समय से क्रोध कब गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बहस होने पर ब्रेक ले। कहते हैं कि अपनों के लिए हार जाना भी गलत नहीं, इसलिए अगर बहस बढ़ रही है तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। जब माहौल ठंडा पड़ जाए तो साथी को अपनी समस्या बताए और मिलकर कोई हल निकालने की कोशिश करें। वजहों पर बात जरूरी है, संवाद जरूरी है, इसलिए लड़ाई के बाद बातचीत करना बंद ना करें। एक दूसरे की समस्याओं को शांति से सुने और चर्चा करें कि क्या गलत हुआ और किन चीजों की वजह से दोनों के बीच तीखी बहस हुई। समझे कि समय लगेगा। अगर बहस बहुत अधिक बढ़ गई हो तो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूरी बनाना अच्छा हो सकता है। वो समय आपको चीजों को शांति से सोचने का मौका देगा, हालांकि दूरी क्षणिक ही हो, इस बात का ध्यान रखें। प्रोफेशनल हेल्प भी ले। विवाद बढ़ रहा है और खुद सुलझाना मुश्किल हो रहा है तो किसी रिलेशनशिप काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से मदद लेने से कोई बुराई नहीं है। टकराव से बचने के टिप्स। सुनना जरूरी है, इसलिए जब आपका साथी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हो तो उसे बीच में टोके बिना ध्यान से सुने। दोषारोपण से बचे, जैसे तुम हमेशा ऐसा करते हो या तुम्हारी वजह से, जैसी बात ना कहे, इसके बजाय मैं महसूस करता हूँ या करती हूँ के जैसे वाक्यों को चुने। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाइए और पार्टनर की भावनाओं को समझे। गुस्से में कुछ भी कहने से बचे। रिलेशनशिप में तालमेल बिठाना आवश्यक है, इसलिए अपनी जरूरतों को समझे और पार्टनर की जरूरतों का भी सम्मान करें। विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखें। भरोसा धीरे धीरे बनता है, इसलिए इसे टूटने ना दें। यदि कोई संदेह या असुरक्षा है तो बिना विवाद उस पर चर्चा करने की कोशिश करें। एक दूसरे के साथ समय बिताना आवश्यक है। साप्ताहिक या मासिक गतिविधियां साथ में जरूर प्लान करें। अपनी उपेक्षाएं स्पष्ट करें। रिश्ते से आपकी क्या उम्मीदें हैं इस पर स्पष्ट रहे। पार्टनर की उपेक्षाओं को भी समझे और संतुलन बनाए रखें। रिश्ते मुंह मोड़ लेने से नहीं बनते, वो तो तब बनते हैं जब हम ईगो को थोड़ा पिघलाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दूसरों के पहलों को भी। मतभेद हर रिश्ते में होते हैं, पर अगर हम हर बार रिश्ता छोड़ने की सोचेंगे तो जिंदगी में सिर्फ लोग मिलेंगे, रिश्ते नहीं। तो चलिए आज से एक नया फैसला लेते हैं। मतभेद होने से पहले नहीं भागेंगे, सुलझाएंगे, समझाएंगे और रिश्ते का और गहरा बनाएंगे। रिश्ते उन्हीं के साथ बनते हैं जो मतभेद के बाद भी साथ निभाते हैं। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

0: दोईचु बोजान 90.0 रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हंद।
1: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
2: आज का जो ललवाक है ये बड़ा ही विचित्र ललवाक है, इसमें आपको साइंस भी दिखेगा। मैं इस ललवाक की बात आपको बताता हूँ। लल कहती है, बान गोलते प्रकाश आव जुंगे, चंद्र गोलते मुती सेथ, सेथ गोलते कहते ना पुने, गई भूर वस्वा मिजरित कहते। इस वाक में आपको सुनाई देगा कि बान गोलते प्रकाश आव जुंगे, यानी सन जब डूब जाता है, जब खत्म हो जाता है, जब डिसॉल्व हो जाता है, तो चंद्रमा निकल के आता है, मून चमकना शुरू कर देता है। और जब वही मून डिसअपियर हो जाता है तो जो कॉन्शियसनेस की लाइट है वो निखर के सामने आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब कॉन्शियसनेस भी डिसॉल्व हो जाता है तो बचता क्या है? बचता वो शून्य है, बचती वो एम्प्टीनेस है। और उस एम्प्टीनेस में ये भूर वो अस्वह, तीनों जो कॉस्मिक प्लेन्स हैं, ये तीनों के तीनों उस एम्प्टीनेस में, उस शून्य में खत्म हो जाते हैं। अगर आप आज साइंस भी देखेंगे तो न्यूरोसाइंस हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो ब्रेन का एक आउटकम है, लेकिन जो लल कहती है उसके कहने के अनुसार कॉन्शियसनेस ब्रेन का आउटकम नहीं है, बल्कि ब्रेन कॉन्शियसनेस का ही एक आउटकम है, ब्रेन रिसीवर है, ब्रेन रिफ्लेक्टर है उस कॉन्शियसनेस का। जैसे चंद्रमा जो है वो बिना सूर्य की लाइट के चमक नहीं सकता, वैसे ही हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो बिना उस अवेयरनेस के फंक्शन नहीं कर सकती। यानी जैसे जैसे अवेयरनेस अपना विस्तार करती है, जैसे जैसे चित्त का विस्तार होता है, उस चित्त के विस्तार के साथ साथ ही मैं उस नीचे के प्लेन से ऊपर के प्लेन की ओर मुड़ना शुरू हो जाता हूँ। और एक समय ऐसा आता है जब मुझे फिजिकल लाइट, जब मुझे फिजिकल अवेयरनेस से परे हटके मुझे उस कॉन्शियस अवेयरनेस, उस कॉस्मिक अवेयरनेस की ओर लेके जाता है। और उस कॉस्मिक अवेयरनेस से भी जब मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो मैं एक अल्टीमेट शून्य में पहुंच जाता हूँ, जहां मुझे किसी लाइट की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा होगा, अगर सूर्य की लाइट खत्म हो जाए तो चंद्रमा की लाइट से हम देखते हैं, अगर चंद्रमा की लाइट अंधकार हो जाए तो हम मन की आंखों से देखते हैं, लेकिन जब मन की आंखें भी चली जाए तो फिर वहाँ शून्य ही बचता है उस अंधकार में, बस सिर्फ वही एक कॉस्मिक साउंड, वो फील्ड ऑफ इनफिनाइट पोटेंशियल, वही बच जाता है और वही शिव है।

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम पेश है। मुझे तू दर्द दे ऐसा जो तुझे भी मिल गया हो, मुझे तू फूल दे ऐसा जो मुरझा के खिल गया हो, मुझे तू दिल भी दे ऐसा जो अब तक सिल गया हो। मैं हूं रमेश मैं।

एक सन्नाटा है जो मेरी उम्र के सिमटे हुए पलों की रहनुमाई करता है। तुम्हें ने तो सिखाया है चिराग बुझाने का तरीका भी। तुमने ये भी कहा था कि खुदा भी अंधेरों में सफर करते हैं, इसलिए एक सन्नाटा रखा है मैंने अपने आसपास।

अभी तक मुझको वो कहां भूले हैं। हम तो झूले हैं कितनी बहारों में, चिनारों में, सितारों में, जब कभी सफर होता था हमारा, और अपनी अपनी पसंद का तोड़ लेती थी सितारा। अभी तक गुलाबों के पत्ते हैं किताबों में, एक राज की तरह है तू मेरे हमराजों में।

0: कहां गई वो रातें, प्यार भरे नगमे, मासूमियत की बातें। सब कुछ बदल बदल सा गया है, मगर मेरा तस्वुर, मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात खामोश तनहा ठहराव लिए। इन फिजाओं में तेरा मेरी राहों का तकना फिर से मजबूर करता है जीने को। आखिर क्यों? इसलिए शायद कि हम और गम के तूफान में बह जाएं और तड़पें, गुट गुट कर दम तोड़ दे।
1: बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम।

तेरा, मगर तूफान में चिराग रोशन कैसे हो? अंधेरों से रोशनी की उम्मीद, आखिर जिंदगी का हासिल क्या है? कुछ भी तो नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, इसलिए तू

रिश्तों की बातें झूठी हैं, ये दो पल का जीवन, इसमें बिछड़ना एक हकीकत है, मिलना तो सिर्फ बहाना है। अंधेरे से मायूस ना हो, ये सफर है सूरज का, जिसमें ढल जाना एक हकीकत है, चढ़ना तो सिर्फ बहाना है।

0: पेशे एक खास कार्यक्रम मोहम्मद रफी पर प्रस्तुत करेंगे रमेश मराठा।
1: हजारों साल नरगिस अपनी बीनूरी पिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदबर पैदा। ये आवाज सुन रहे हैं आप, जरा पहचानिए तो। ये आवाज आज तलक आपके कानों में रस घोलती आ रही है, आपके दिलों को करार, रूहों को सुकून पहुंचाती आ रही है। ये सदाबहार आवाज किसी तारुफ तारीफ की मोहताज नहीं है, ये आवाज अपनी मिसाल आप है। गरज बेमिसाल है, लाजवाब है, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और

हैं और भी दुनिया में सुखन वर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का ही अंदाजे बयां।

मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 को गांव सुल्तान सिंह कोटला अमृतसर में हुआ है। दोस्तों, रफी का आगाज तब हुआ जब के.एल. सहगल, मुकेश किशोर कुमार, तलत महमूद और हेमंत कुमार अरूज पर थे। 6 साल की उम्र से ही उनमें गाने की सलाहियतें नमूदार हुई। तरबियत हासिल करने के लिए आपने लाहौर का रुख किया। लाहौर में आपने अपनी तरबियत बड़े गुलाम अली खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और अब्दुल वहीद खान साहब से हासिल की। लाहौर में ही 16 साल की उम्र में आपने संगीतकार श्याम सुंदर की पंजाबी फिल्म गुल बलोच में बहसती गुलूकार मंजर आम पे आई।

बॉम्बे फिल्म नगरी के एक निर्माता नजीर ने सन 1944 में उनकी आवाज सुनी और फिल्म गांव की गोरी में रफी साहब को गाने की दावत दी। उसके बाद मौसीकार नौशाद अली ने फिल्म पहले आप में आपको एक कोरस में पेश किया।

सन 1947 में फिरोज निजामी ने फिल्म जिगनू में मलिके तरन्नुम नूर जहां के साथ आपको गाने का मौका फराहम किया। उसके बाद ये गुलोकार पीछे न देखते हुए आगे की तरफ बढ़ता गया, कहता गया, मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत आगे।

1948 में फिल्म प्यार की जीत का ये गीत एक दिल के टुकड़े हजार हुए मकबूल हुआ। फिल्म बड़ी बहन का गीत मोहब्बत के धोखे में कोई न आए मौसीकी के शायकीन महफिल की जीनत बनता गया।

इसके बाद मोहम्मद रफी के पास फिल्मों की एक लंबी कतार लगी। जैसे मेला, शहीद, सगाई, दुलारी, दीदार, दिल लगी और बरसात, ये सिलसिला सन 1950 तक जारी रहा।

सन 1953 में जब फिल्म बेजू बावरा रिलीज हुई तो रफी की गाय हुई दो भजनों ने कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया। इस तरह से यह बात सिद्ध हुई कि रफी साहब जात पात मजहब और मिल्लत की बंदिशों से ऊपर उठकर फन मौसीकी की खिदमत

0: शास्त्रीय संगीत में आपका एक मुनफरिद मुकाम था। सन 1950 से सन 1960 तक आपका दौर गायकी की दुनिया में बेताज बादशाह की तरह रहा।
1: रफी साहब के साथ बहुत सारी यादें होंगी जो आप हमारे सुनने वालों तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाना चाहेंगे।
2: हाँ भाई, रफी साहब मेरे भाई की तरह थे, बड़े अच्छे दोस्त भी थे, मेरे आइडियल भी थे। वो न सिर्फ बड़े अच्छे कलाकार थे, बहुत सुरीले गायक थे, बल्कि बड़े ही खूबसूरत इंसान थे। तो उनका दिल बिल्कुल इतना मोम की तरह था, कभी वो नाराज होते हुए उन्हें मैंने नहीं देखा। इतने बरसों से साथ रहा, कई प्रोग्राम उनके मैंने कंपेयर किए, कई बार बातचीत के लिए गया, मिलने गया, कभी मैंने उनको नाराज होते हुए नहीं देखा। हमेशा बड़ी इंकसारी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ वो सबसे मिलते रहते थे, और बड़े पाक इंसान थे। न सिगरेट, न शराब, न कहीं उल्टा सीधा बोलना, कुछ नहीं। हमेशा शराफत और इज्जत के साथ वो बात करते थे लोगों से, और बड़ी नरमी से बात करते थे, हमेशा मुस्कुरा कर बात करते थे। इसलिए वो हमेशा लोगों के दिलों में बस जाते थे। आवाज के बारे में क्या कहें, वो तो थे ही बहुत ही सुरीले और बहुत जबरदस्त गायक। हर तरह का गाना बड़ी अच्छी तरह निभा लेते थे, और मैंने इत्तेफाक से कई ऐसे शोज भी कंपेयर किए जिसमें और भी कई लोग साथ में गा रहे होते उनके, यानी किशोर या मुकेश या लता और आशा वगैरह सब कई साथ मिलकर भी कई शोज होते थे। तो फिर भी मैं देखता था कि सुरीले सभी होते थे, मन्ना डे भी, लेकिन रफी की जो पॉपुलैरिटी थी वो कुछ और ही थी। तो वो जब गाना शुरू करते थे झूम कर, तो जब सब बच्चे सब खड़े होकर झूमने लगते थे। एक बात और थी कि जब भी वो जाते थे किसी शो में, तो बड़े साहब वो इंसाफ पसंद थे। मतलब ये कि वो हमेशा कहते थे, मुझे जिस क्लास में प्लेन में तुम ले जाते हो या ट्रेन में ले जाते हो, उसी क्लास में तुम मेरे सारे यूनिट को ले जाओ। ऐसा ना हो कि मुझे फर्स्ट क्लास में रखो, बाकी को सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में रखो। होटल में भी वो कहते थे, जिस होटल में मैं रहूंगा उसी होटल में सबको रखिए। यूनिट उनके साथ काम करने वालों का वो भी उन पर फिदा था और बहुत इज्जत करता था उनकी।
1: अमीन साहब, कोई ऐसा इंसिडेंट जो बिल्कुल आपके दिल के करीब है रफी साहब के साथ?
2: इंसिडेंट ऐसा रफी के साथ एक ही बड़ा अजीब सा इंसिडेंट रहा, या यूं कहिए कि नहीं रहा, वो ये था। तो मैंने करीब करीब सभी लोगों को इंटरव्यू किया, एक दो तीन लोग बड़े जो मेरे करीब थे वही रह गए, उनमें से एक थे रफी। अब रफी क्यों रह गए कि मैं कई बार उनके पास जाता था कि रफी भाई, मेरा प्रोग्राम चल रहा है और मैं चाहता हूं कि आप कुछ इसमें बोलें। तो कहते थे, नहीं यार, वो क्या है कि मैं तो गाने वाला हूँ, क्यों बुलवाते हो मुझसे खाम खा, तुम एक काम करो
1: जी।
2: तो जब मैंने बहुत जिद की तो कह रहे, तुम एक काम करो, तुम कोई ऐसा प्रोग्राम करो जिसमें मुझे बोलना ही ना पड़े। तो मैं उलझन में पड़ गया कि यार ये कैसी बात है। तो खैर वह सोचता रहा, तो इसमें कई बरस बीत गए, और फिर मैंने कोशिश की कि कहीं अगर मेरे पास मेरे लिए नहीं बोलते तो किसी और के लिए बोला होगा। तो सारी दुनिया से मेरे दोस्त बहुत हैं ब्रॉडकास्टर्स, कई सारी दुनिया में फैले हुए, तो मैंने कोशिश की कि रफी का कोई इंटरव्यू मेरे हाथ लग जाए
1: जी।
2: तो कई लोगों ने इंटरव्यू भेजे रफी के, लेकिन उसमें यही था कि वो हाँ हूँ, बहुत अच्छा, हाँ मजा आया, बस इतना बोलकर वो रुक जाते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। बस ज्यादा से ज्यादा एक 25 सेकंड या 20 सेकंड के जुमले मुझे मिल जाते थे, तो एक दो मैंने बजाए, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया। तो आखिरकार मैं उनके पास गया एक रोज, रफी भाई ये आपने उलझन में डाल दिया, आप कैसे करें आपको इंटरव्यू। कहने की सीधी सी बात है, तुम ऐसा सवाल करो जिसका जवाब मैं गा कर दे दूंगा
1: जी।
2: मैंने कहा चलो डन, हो जाएगा। और मैं लग गया घर आकर उसके बाद उस टाइप का इंटरव्यू प्लान करने में, लेकिन तब तक बहुत बरस बीत चुके थे, उनकी तकदीर ने मुंह फेर लिया और वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो उन्हें कभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इत्तेफाक से एक हुआ ये था कि एक बार मैं दादा बर्मन की मौत पर तमाम बड़े बड़े संगीत सितारों का इंटरव्यू ले रहा था गीतमाला के लिए, तो सबको रिकॉर्ड किया। रफी साहब को रिकॉर्ड करने में गया, लेकिन रिकॉर्डिंग जो हुई उन्होंने स्टूडियो से बाहर आकर की ओपन एयर में। एक तो कुछ बोले नहीं ज्यादा, दूसरे वो कुछ वहां कुत्तों की आवाज आ रही थी भौंकना, और कुछ कौओं की आवाजें आ रही थी, तो मैंने उसको इंटरव्यू थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, वो क्रैप कर दिया और नहीं बजाया।
1: जी
2: मगर उन्हीं दिनों मेरे भाई साहब का, हमीद भाई का इंतकाल हुआ था, तो मैं ज्यादा अटेंड नहीं करवा रहा था। रफी साहब का ये प्रोग्राम बाकी लोगों की आवाजें भर के मैंने रिकॉर्डिंग्स को दे दिया कि चलो जिसको मिक्स करके तुम भेज देना रेडियो सिलोन। तो हुआ ये था, जिसका बाद में मुझे पता चला कि मेरे राइटर जो थे रियाज सैयद साहब, बहुत अच्छे काबिल राइटर थे, तो मेरी गैर मौजूदगी में वो गए रफी साहब के घर और कहने लगे साहब अमीन साहब तो आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मैं गुजारिश करता हूँ थोड़े कुछ जुमले बोल दें आप दादा बर्मन के बारे में, तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका।
1: जी
2: तो उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया और वो रियाज साहब वापस लाकर मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने रिकॉर्ड इसको भी दिया, और वो इंटरव्यू उनका उन ट्रिब्यूट टू बर्मन दादा वो ब्रॉडकास्ट हुआ, जो मुझे जिसका पता ही नहीं चला कई वर्षों बाद तक। तो ये वही एक मेरे मेरी अपनी रिकॉर्डिंग में बस वही एक चीज मेरे पास है रफी की कही हुई। बर्मन दादा और जय किशन और मदन मोहन जैसे लोग इस दुनिया से जाते रहे तो हमारा संगीत तो सुना हो जाएगा, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा
1: जी
2: था।
1: अमीन साहब, रफी साहब का कोई ऐसा गाना जो रफी साहब के दिल के बिल्कुल करीब था?
2: भाई एक गाना है, वैसे तो उनके कई गाने मुझे बहुत पसंद हैं, मसलन गाइड की बहुत गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन एक गाना जो उनके दिल के भी करीब हो और मेरे दिल के भी करीब उनकी याद आते आते हुए, वो गाना है रोशन साहब के म्यूजिक में फिल्म चित्रलेखा का,
1: जी
2: कि मन रे तू काहे न धीर धरे, और एक एक जुमला उसमें बड़ा अच्छा था, एक एक एक पंक्ति एक मिसरा साहब ने लिखा था कि कोई न संग मरे। तो ये हमें हमेशा इत्मीनान दिलाता है कि भाई मौत तो आनी है सबके लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ जिंदगी में कि मौत के बाद भी हमारी याद जिंदा रहे, और यही बात रफी साहब ने कायम रखी अपने जाने के बाद भी, आज भी उनके गीत

लगभग हर संगीतकार के साथ काम किया। अनिल विश्वास, श्याम सुंदर से लेकर हुसनलाल भगतराम, नौशाद से लेकर एस डी बर्मन, मदन मोहन से लेकर ओपी नैयर, शंकर जयकिशन से लेकर कल्याण जी, आनंद जी, रवि से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन से लेकर बप्पी लहरी तक।

कुछ गीत रफी ने इस तरह से गाए जिनमें उम्र की कोई बंदिश नहीं थी। जैसे तस्वीर बनाता हूं फिल्म दीवाना से। बड़ी देर भाई फिल्म बसंत बहार से, ऐसे तो न देखो फिल्म तीन देवियां से, सुहानी रात ढल चुकी फिल्म दुलारी से, मन मोरा बावरा फिल्म रागनी से, न किसी की आंख का नूर हूं फिल्म लाल किला से, जो बात तुझ में है फिल्म ताजमहल से, रोशन तुम्ही से दुनिया फिल्म पारसमनी से, फिर वो भूली सी याद फिल्म बेगाना से।

रफी साहब में एक खास बात यह भी थी कि वो अपनी आवाज को किसी भी सांचे में डालने की, किसी भी रस में पेश करने की सलाहियत रखते थे। खाओ शहनशाही जज्बात दिलीप कुमार हो या मस्ताना देव आनंद, उछलता कूदता शम्मी कपूर हो या पारंपरिक भक्ति रस में डूबा हुआ भारत भूषण, हास्य रस में नहाया हुआ जॉनी वॉकर या महमूद हो, गरज यह है कि रफी ये तमाम सलाहियतें रखता था।

ये सही है कि मोहम्मद रफी आज नहीं है, लेकिन उसकी आवाज आज भी कई संगीत प्रेमियों की जीने का सहारा बन चुकी है। कई नए कलाकारों के लिए मशले राह साबित हुए हैं और उन्होंने रफी साहब के अंदाज को अपना कर अपना लक्ष्य तय किया है।

0: सन 1971 में रफी साहब गायकी की दुनिया में सरफिरिस्त रहे और इसी साल आप हज पर चले गए।
1: खुदा अपने बलियों से होता है राजी।
0: हज के फराइज अंजाम देने के बाद मौसीकी की दुनिया को अलविदा किया और आप अपने फर्जंद के साथ लंदन में कयाम करने लगे। इस फनकार की गैर हाजिरी को सामीन ने बर्दाश्त नहीं किया और रफी को गायकी की दुनिया में वापस लाने में कामयाबी हासिल की।

मोहम्मद रफी ने चंद एक ममालिक को छोड़ सारी दुनिया का दौरा किया। रफी न सिर्फ एक महान गायक कलाकार ही थे बल्कि अजीम शान शख्सियत के मालिक भी थे। वो सादा नरम तबीयत और खुदा का खौफ रखने वाले इंसान थे। वो

रफी साहब ने 36 सालों में तकरीबन 26,000 मुख्तलिफ हिंदुस्तानी भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। आपको 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और आपने पद्मश्री एजाज भी हासिल किया।

महफिल चाहे तंज मिजाज की हो या दर्द वालम की, चाहे इश्क आशिकी या सूफियाना महफिल, रफी साहब हर महफिल को अपनी मधुर आवाज से सरशार करते रहे। रफी साहब जैसे कलाकार एक ही बार हयात पाते हैं।

0: रफी ने अपने जमाने के लगभग सभी को सिंगर्स के साथ काम किया। लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, शमशाद बेगम, सुरैया, मीनू परशोत्तम और सुलक्षणा पंडित।
1: तुम अकेले तो कभी बाग में जाए।
0: और ये सभी गाने मकबूल भी।

0: आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी पर मबनी यह प्रोग्राम, प्रस्तुत करता रमेश मराठा।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम वितस्ता गीत माला एपिसोड 12। आज का कार्यक्रम आधारित है डॉक्टर सीमा वर्णिका के गजल संग्रह अल्फाज ए रूह पर। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने। एडिट, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सपोरी।

गजल कहना एक ऐसा रूहानी एहसास है जिसमें ख्यालों को अल्फाज का जामा पहनाकर खूबसूरत शक्ल दे दी जाती है जो सीधे दिल में उतरती है। ये सभी गजलें अलग अलग रंगों से रंगी हैं, ख्यालों ने दूर तक सफर किया है, ये लफ्ज कहते हैं। नतीजा तो पाठक तय करेंगे। जब से होश संभाला है गजल सुनने में विशेष रुचि रही है। लिखना इतना आसान नहीं था, बहवजन आदि सुनकर डर लगता था। तमाम कोशिशें तथा गजल पाठशालाओं से जुड़कर राह आसान होती गई। उस्ताद श्री दिनेश भोपाली जी तथा आदरणीय आरती आरजू दी की शागिर्दी में कलम चलने लगी, उनको तहे दिल से शुक्रिया। उनके लिए चंद अल्फाज। उस्ताद घर मिलता नहीं जवाब हमें, उम्दा गजल कारीगरी आती कहां, रहमत खुदा की मानते हैं हम आपको, अल्फाज की बाजीगरी आती कहां। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि आज के हमारे मेहमान डॉक्टर सीमा वनिका के हैं, जिनके गजलें कविताएं हम इस कार्यक्रम में पढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और लेके आया हूं वितस्ता गीत माला का एपिसोड 12। आज के इस एपिसोड में जिस लेखिका की हम कविताएं सुनेंगे और पढ़ेंगे वो बहुत ही कमाल की लिखती हैं। आज का ये कार्यक्रम आधारित है गजल संग्रह अल्फाज रूह पर, जिसको उम्दा अल्फाज शब्दों और न्यारी सोच के साथ सजाया संवारा और लिखा है कानपुर उत्तर प्रदेश से सशक्त कवयित्री आदरणीय डॉक्टर सीमा सक्सेना वर्णिका, जिनको हम संबोधित करेंगे डॉक्टर सीमा वर्णिका से। आदरणीय दिनेश भोपाली जी इनके लिए लिखते हैं। आदरणीय सीमा वर्णिका जी के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा, आपकी जितनी अच्छी पकड़ छंदों में उतना ही आप गजल के बारे में जानते हैं। आपकी ये पुस्तक अल्फाज रूह बहुत अच्छी पुस्तक है। आपने पुस्तक में जो भी गजल कही है वो वास्तव में रूह तक दस्तक देती है। आपने समाज के हर वर्ग के लिए शेर कहे हैं। सीमा कर्णिका जी ने मोहब्बत पर कुछ यूं शेर कहा है, बंदिशें बाने लगी उनकी मोहब्बत देखकर, दिल गुलामी अब करे नजरे इनायत देखकर। वहां पर एक से एक बढ़कर शेर लिखे हैं और सीमा कर्णिका जी भी कमाल करती हैं। नजाकत से गमे दिल को छिपाना जानती थी माँ, शिकारे खुद फरामोशी बहाना जानती थी माँ। सीमा कर्णिका जी की गजलों में हमेशा ही दर्द झलकता है, उनके हर शेर में यह एहसास होता है। आपसी छींटाकशी बातें ठाके खो गए, बेहिसी छाई रही फिर आंख भर जाने के बाद। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला की, जो आधारित है डॉक्टर सीमा वर्णिका के गजल संग्रह अल्फाज रूह पर। गजलें सुनी या पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। डॉक्टर सीमा वर्णिका लिखती हैं, बुलाकर प्यार की बातें सदा तकरार करते हैं, मोहब्बत से भरा दिल ए खुदा बेजार करते हैं, सजाकर हम ख्यालों को तके रास्ता यहां दिन भर, सुहानी शाम को आकर यूं ही बेकार करते हैं। अदा लगती नहीं अच्छी नजरअंदाज करने की, यहां शर्मो हया को छोड़कर इजहार करते हैं, ताल्लुक बेरुखी को देखकर अब क्या समझते हम, जिससे ताउम्र चाहा वो हमें बीमार करते हैं। चलो सीमा मोहब्बत की नई दुनिया बसाओ तुम, यहां उल्फत नहीं अब लोग व्यापार करते हैं, यहां उल्फत नहीं अब लोग व्यापार करते हैं। एक और कविता में डॉक्टर सीमा वर्णिका लिखती हैं, बदनाम मोहब्बत में होने की रिवायत है, ए यार भला तुमको इस पर भी शिकायत है, जज्बात कहें क्या ये मासूम बड़े होते हैं,
अल्फाज मेरे में दिखती साफ सदाकत है। परवाह करें कब तक मशरूफ जमाने की, जब मान लिया लोगों ने मेरी हिमाकत है। अब साथ चलो जीवन भर काट सफर देंगे, ये जीस्त सुनो यारा अंजाम मसाफत है। अंजाम यहां कुछ हो मंजूर हमें होगा, लो बांध कफन सीमा ली ठान अदावत है। लो बांध कफन सीमा ली ठान अदावत है।

डॉक्टर सीमा वर्णिका लिखती हैं, आज रिश्ते किस भरोसे पर टिके हैं, ख्वाब सारे मुफ्त में यूं ही बिके हैं। मानते थे हम जिससे अपनी रियासत, आज उस दर पर भिखारी से झुके हैं। दी तवज्जुह भी नहीं जिन मामलों को, अब अदालत के लगा फेरे थके हैं। वक्त के सैलाब का देखो स्तम, अब ले गया सब हाथ खाली हो चुके हैं। होशियारी से चलो सीमा यहां, अब इस शहर में लोग फिर मौका तके हैं, इस शहर में लोग फिर मौका तके हैं। एक और कविता में डॉक्टर सीमा वर्णिका लिखती हैं, निर्दोष बशर बस एक ये काम करा होता, इल्जाम झुकाकर सिर को मान लिया होता। आता न बवंडर ये आफत न हुई होती, कोराम जमाने का इस हद न मचा होता। माकूल यहां होता दुनिया की रजा मानो, विपरीत चलो तो हर एक शख्स खफा होता। रफ्तार पड़ी धीमी इस राह रुकावट से, आसान गुजर जाती जग को न खला होता। अब धूप बड़ी सीमा छाया ना हवा मिलती, आराम करें कैसे सहारा ना मिला होता, आराम करें कैसे सहारा ना मिला होता।

डॉक्टर सीमा वर्णिका लिखती हैं, दास्तां सुनकर जमाना क्यों हंसा हर बार है, मुस्कुराते देख उनको दिल हुआ बेजार है। चालबाजी अब समझ जाते जहां की खूब हम, सोचते क्यों लोग ऐसा एक वही बेदार है। इस शराफत वास्ते खामोश हम बेहद रहे, उफ इससे दुनिया समझती अब हमारी हार है। वक्त का हर फैसला मंजूर करना अब पड़ा, काश जाने यह जमाना क्यों किया इनकार है। आप बीती हम लिखें जग वाहवाही ठोंकता, लोग कहते खूब सीमा क्या कहे अशरार है, लोग कहते खूब सीमा क्या कहे अशरार है। एक और कविता में सीमा वर्णिका लिखती हैं, दगा देते यहां अपने भरोसा टूट जाता है, लगे जब ठेस दिल पर तो बुढ़ापा टूट जाता है। कभी चलना सिखाया था जिन्हें तब उंगली थामे, करें छलनी कलेजा आज नाता टूट जाता है। जहां औलाद रचती साजिशें वालिद ठगा सा हो, भले हो शान शौकत पर घराना टूट जाता है। हकीकत अब बयां क्या हो यहां ठहरे सभी अपने, जले जब आग में मजबूत लोहा टूट जाता है। शिकायत अब करें किससे कहां जाकर बता सीमा, जमाने के चलन को देख सपना टूट जाता है, जमाने के चलन को देख सपना टूट जाता है।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हमसफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। कार्यक्रम जारी है, वितस्ता गीतमाला एपिसोड 12। आज का ये कार्यक्रम आधारित है डॉक्टर सीमा वर्णिका की गजल संग्रह अल्फाज़े रूह पर। कुछ और कविताएं प्रस्तुत करता हूं। डॉक्टर सीमा वर्णिका लिखती हैं, रोज चौखट ताकती मां छोड़कर जाने के बाद भूलती औलाद घर को क्यों शहर जाने के बाद, आपसी छींटाकशी बातें ठहा के खो गए, बेहसी छाई रही फिर आंख भर जाने के बाद, देखकर तेवर मिजाजी आज मेहमा वो लगे, अजनबी ऐसे बने बच्चे किधर जाने के बाद, कल्बिया जो ख्वाब पैदाइश से थे सजने लगे, आज वो सारे डहे उनके मुकर जाने के बाद, बेअसर आंसू हुए जब मौज मस्ती का नशा, हो गई जर्रा सरीखी मां बिखर जाने के बाद, उड़ गए सारे परिंदे पेड़ जर्जर जब हुए, बागबां भी क्या करें पत्तों के जर जाने के बाद, हाथ मलते रह गए हम रेत सा फिसला समय, क्या करें सीमा जमाने वो गुजर जाने के बाद, क्या करें सीमा जमाने वो गुजर जाने के बाद। एक और कविता में डॉक्टर सीमा वर्णिका लिखती हैं, नूर मां का पिता की परी बेटियां, खुश नसीबी हमारी मिली बेटियां, रात हो जब अंधेरी उजाला भरे, चांद तारों सरीखा बनी बेटियां, वो कहां भी रहे इस जहां में भले, साथ दुख में सदा ही खड़ी बेटियां, झेलती धूप बारिश सभी मुश्किलें, लाड से प्यार से ये पली बेटियां, यह रिवायत भला क्यों जहां में बनी, सौंप दें दूसरों को पली बेटियां, छोड़कर मायका बचपना भूलकर फर्ज सारे निभाती बली बेटियां, कीमती जेवरों को न चाहें कभी, हो खुशी हर तरफ चाहती बेटियां, घर बसाती कहीं दूर जाकर सभी, दो कुलों को सजाती यही बेटियां, वंश की बेल बेटे लगाएं भले, रोपती पालती पोसती बेटियां, आंख में अश्क आए नहीं भूल से, दे दुआ मां पिता हो सुखी बेटियां, आज सीमा कहे आरजू बस यही, मन्नतों की बने डोर सी बेटियां, मन्नतों की बने डोर सी बेटियां। बहुत खूब सीमा जी। बेटी होती ही ऐसी जो मां बाप के दुख दर्द में हमेशा साथ रहती है। बहुत खूब।
1: बेटी की हर अदा में चंचल कहानियां होती है, घर के कण कण में बेटियों की निशानियां होती है, बड़े ही नसीब वालों के घर उतारी जाती है ये बेटियां। बेटी सिर्फ घर की ही नहीं कायनात की रानियां होती है।

डॉक्टर सीमा वर्णिका एक कविता में लिखती है, ए खुदाया मुश्किलों से आज राहत चाहिए, जिंदगी में अब जरा फरते मसरत चाहिए। मन भटकता है अकेले चार दीवारी में क्यों, सिर्फ ख्वाहिश एक अदद सा हम तबीयत चाहिए। दोस्ती की आड़ लेकर फायदा लेते यहां, खैर ख्वाही यह दिखावा आज रुखसत चाहिए। घूमती दुनिया मुखोटा जो चढ़ा कर आजकल, दो रुखे बेहरूपिये लोगों से फुर्सत चाहिए। दौर सीमा उम्र का मन को लगा है आखिरी, चाह जीते जी मुकम्मल हो इनायत चाहिए, चाह जीते जी मुकम्मल हो इनायत चाहिए। एक और कविता में डॉक्टर सीमा वर्णिका लिखती हैं, नहीं अच्छा जरा सी बात का अखबार हो जाना, जुबानी जंग में अच्छा नहीं औजार हो जाना। करें आगाज अक्सर बात कितनी भी नजाकत से, मकामे गुफ्तगू का यूं भला तकरार हो जाना। मिली नजरें असर ऐसा लगा पैदाशी रिश्ते, तेरा खामोशियों से यूं दरो दीवार हो जाना। शुरू ये कार ख्वाबों में गुजरते दिन मोहब्बत से, बसर जूं वक्त जीना भी यहां दुश्वार हो जाना। कहे सीमा जुबां से फूल थे तौसीफ कर जरते, खुदाया देख हैरान दिल जुबां तलवार हो जाना, खुदाया देख हैरान दिल जुबां तलवार हो जाना। इस कार्यक्रम की आखिरी कविता पेश है, डॉक्टर सीमा वर्णिका लिखती हैं, छोड़कर मासूमियत दिल आज पत्थर कर लिया, बेवजह क्यों जिंदगी को यार बदतर कर लिया। मुस्कुराहट देखकर अंदाज लगता दोस्त कब, ये जमाना सोचता हालात बेहतर कर लिया। फैसला कुन दस्तखत कर कागजों पर आखिरी, वाकिया काबिलिये हजीं मफहूम भीतर कर लिया। अश्क शोई कौन करता वास्ता कब बेसबब, इंतहा खुदे इतमादी लाव लश्कर कर लिया। मन मुताबिक जी सके कब कौन सीमा पूछती, मांग जैसी वक्त की वैसा मुकद्दर कर लिया, मांग जैसी वक्त की वैसा मुकद्दर कर लिया।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विदस्ता गीतमाला एपिसोड 12, जो आधारित था डॉक्टर सीमा वर्णिका के गजल संग्रह अल्फाज रूह पर। रिकॉर्ड किया राहुल अलिया ने, एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विविधता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विविधता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विविधता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विविधता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विविधता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए।

0: कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता, इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वेसालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनोपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है। इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण।
2: जी हां श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर प्रधानमंत्री की 137वें एपिसोड की मन की बात। अब आप हमारी जो कार्यक्रम है वो आप सुनते रहिए और आप अपना फीडबैक भी हमें जरूर भेजिएगा हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7054131010।

यो FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
3: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
2: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
4: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
5: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

तू जंगल की हिरणी बता क्यों, तू जंगल की हिरणी बता क्यों, एकली भटके।

0: साथ चलन की तैयारी कर ले,
1: कर ले।
0: अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
2: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन जो
1: रेडियो वितस्ता
2: असले पौन पटाके
1: सुन मेरे दिलदार 90.0 मेगा।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 705641310 705641310
3: पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: बेकरार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट, पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगा हर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का परवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। 20 सेंटीमीटर होने पर 30 दिन बाद ऊपरी कलियों को तोड़ दें। किसान अगस्त में करें गेंदे की रोपाई, नवरात्र और दिवाली पर मिल सकता है अच्छा भाव। अगस्त का महीना गेंदे की खेती शुरू करने के लिए अच्छा समय है। इस महीने लगाई गई पौध से तैयार फूल नवरात्र, दशहरा, दिवाली और शादियों के सीजन अक्टूबर से बाजार में पहुंचते हैं। इस दौरान मंडियों में गेंदे के फूलों की भारी मांग रहती है, जिससे किसानों को अच्छा भाव मिलता है। करनाल के जिला उद्यान अधिकारी DHO डॉक्टर कमल सैनी के अनुसार, यदि किसान पारंपरिक तरीकों की जगह सही तकनीकी विधियों और उन्नत किस्मों का चयन करें, तो गेंदे की खेती से कम लागत में कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। 30 से 35 दिन बाद जब पौधा 20-25 सेंटीमीटर का हो जाए, तो उसकी ऊपरी कली को ऊपर से 2-3 सेंटीमीटर तोड़ देना चाहिए। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को पिंचिंग कहते हैं। इससे पौधे की नीचे से नई शाखाएं निकलती हैं, जिससे झाड़ घना बनता है और फूलों की संख्या दोगुनी हो जाती है।

अमेरिकन और फ्रेंच गेंदों की अधिक मांग। अच्छी पैदावार और बड़े आकार के फूलों के लिए सही किस्म चुनना बेहद जरूरी है। अफ्रीकन गेंदा, पूसा नारंगी, पूसा बसंती, इंका येलो और मैक्सी गोल्ड। इनके फूल बड़े और वजनदार होते हैं। माला बनाने और सजावट के लिए मंडियों में इनकी सबसे ज्यादा मांग रहती है। फ्रेंच गेंदा, पूसा अर्पिता और रेड ब्रोकेड। इनके पौधे मध्यम आकार के होते हैं और इनमें फूलों की संख्या काफी अधिक निकलती है। 6 ट्रॉली गोबर की खाद डालें, शाम को करें रोपाई। गेंदे के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयोगी रहती है। खेत में बारिश का पानी नहीं रुकना चाहिए। 2-3 बार अच्छी जुताई करके प्रति एकड़ 6 से 8 ट्रॉली गोबर की खाद या 2 टन केचुआ खाद अच्छी तरह मिला दें। नर्सरी में तैयार 25 से 30 दिन की पौध को अगस्त में शाम के समय खेत में लगाएं। कतार से कतार की दूरी 2 फीट यानी 7 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट यानी 45 सेंटीमीटर रखें। प्रति एकड़ 8,000 रुपए मिलता है अनुदान। बारिश के मौसम में फुफंद और जड़ गलने से बचाव के लिए खेत से पानी निकासी की नालियां खुली रखें। पत्तों पर धब्बे दिखने पर मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी और रस चूसने वाले बारीक कीड़ों से बचाव के लिए नीम के तेल का छिड़काव करें। पौध लगाने के 60 से 70 दिन बाद गेंदे की तुड़ाई शुरू हो जाती है। सही देखरेख से प्रति एकड़ 80 से 100 क्विंटल तक फूलों की पैदावार आसानी से मिल जाती है। इससे त्योहारी मांग के समय किसान भाई शानदार कमाई कर सकते हैं। गेंदे की खेती को बढ़ावा देने के लिए बागवानी विभाग 8,000 एकड़ के हिसाब से सब्सिडी भी दे रहा है। एक किसान इस अनुदान राशि का अधिकतम 5 एकड़ तक लाभ ले सकता है। रोग कीट रोधी सब्जियों की किस्में तैयार करेगा महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय। प्याज, लहसुन, बैंगन और कद्दू वर्गीय सब्जियों पर शोध शुरू। गर्मी और लवणीय मिट्टी में भी बेहतर उत्पादन देगी नई किस्में। बदलते मौसम, बढ़ती गर्मी और फसलों में रोग कीट के बढ़ते प्रकोप के बीच किसानों को ऐसी सब्जियों की जरूरत है जो कम लागत में बेहतर उत्पादन दे सके। इसे देखते हुए महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय ने अगले 5 वर्षों में सब्जियों की नई किस्में विकसित कर किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ऐसी किस्मों पर काम कर रहे हैं जिनमें रोग और कीट से प्राकृतिक रूप से मुकाबला करने की क्षमता हो। इससे फसलों पर बार बार कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत घटने और खेती की लागत कम होने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय में फिलहाल प्याज, लहसुन, बैंगन और कद्दू वर्गीय सब्जियों की नई किस्मों को लेकर अनुसंधान शुरू किया गया है। वैज्ञानिकों का फोकस केवल अधिक उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि स्थानीय जलवायु और किसानों की परिस्थितियों के अनुरूप गुण विकसित करने पर रहेगा। खासतौर पर गर्मी सहन करने वाली किस्मों को तैयार करने पर काम किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ऐसी किस्में विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं जो लवणता को अधिक सहन कर सके। नई किस्म तैयार करने में सामान्यतः 3 से 4 साल लगते हैं। इसके बाद परीक्षण और किसानों के स्तर पर मूल्यांकन के चरण पूरे होने पर इन्हें व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। नई किस्म बाजार तक पहुंचने में लगते हैं कई चरण। नई किस्म विकसित करने के बाद सीधे किसानों को बीज उपलब्ध नहीं कराया जाता। पहले शोध चरण और परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद उसके प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। विश्वविद्यालय के अनुसार कई नई किस्मों को तैयार करने में कम से कम 3 से 4 साल लग सकते हैं। इसलिए किसानों को नई किस्मों के लिए कुछ समय इंतजार करना होगा। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ऐसी सब्जियों की किस्मों पर काम कर रहे हैं जो रोग कीट प्रतिरोधी होने के साथ गर्मी और लवणता जैसी परिस्थितियों को सहन कर सके। प्याज, लहसुन, बैंगन और कद्दू वर्गीय सब्जियों पर अनुसंधान शुरू हो चुका है। अगले 5 सालों में नई किस्मों के बीज उपलब्ध हो सकेंगे। ये कहा है डॉक्टर SK मल्होत्रा, कुलपति महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल।
धान की फसल में तना छेदक रोग के लक्षण 50% तक कर सकता है उत्पादन को प्रभावित। प्रति एकड़ 4 से 5 फेरोमोन टेप या लाइट टेप लगाएं, छिड़काव करें। धान की फसल पर तना छेदक कीट रोग का प्रभाव देखा जा रहा है। समय रहते ध्यान न देने पर उत्पादन में 30 से 50% तक की भारी गिरावट आ सकती है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश ने बताया कि इस रोग में पौधे की बीच की रो यानी पत्ती सूखने लगती है, बालियां सफेद पड़ जाती हैं और उनमें दाना नहीं बनता, तने के अंदर छेद हो जाते हैं। किसानों को प्रति एकड़ हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। टीमों ने कई क्षेत्रों में निरीक्षण किया, करीब 20% फसल में इस रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इससे बचाव के लिए खेत में प्रति एकड़ 4 से 5 फेरोमोन टेप या लाइट टेप लगाएं। प्रति एकड़ 20,000 से 25,000 ट्राइकोडर्मा या ट्राइकोग्रामा कार्ड लगाएं। यह कीट के अंडों को नष्ट कर देता है। कीट का प्रकोप दिखने पर फ्रीनोलिन 0.3% ZR 8 से 10 किलो प्रति एकड़ में बालू में मिलाकर खेत में डालें। इसके अलावा क्रोलो टर्निल प्रोयल 18.5% SC 60 से 80 मिलीलीटर को 150 से 200 लीटर पानी में घोल प्रति एकड़ छिड़काव करें। जमीन में दरार नहीं आने दें। इस रोग से बचाव के लिए सिंचाई का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। फसल में केवल उतना ही पानी रहे जिससे जमीन में दरार ना आए। खेत में लगातार पानी ना भरने दें। 2 से 3 दिन के अंतराल पर पानी सुखाकर दोबारा भरें। इससे कीट का जीवन चक्र टूट जाता है। साथ ही दवा का छिड़काव हमेशा शाम के समय करें और अनुशंसित मात्रा से अधिक केमिकल का उपयोग ना करें ताकि मित्र कीट सुरक्षित रहें।

ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए लाया हूं सूत्र जीवन के, और हम आशा करते हैं कि आपके जीवन को हम सुगम बना सके। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त विशाल शर्मा। आज हम बात करेंगे कि सफल होने के लिए आपको अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। यह कहने का मेरा मतलब है कि आपको सफल होने के लिए अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा। अगर हम गौर करें तो इंसान आदतन आलसी होता है, उसकी नेचर में ही मस्ती है और मस्ती करने में उसको बहुत मजा आता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को कहा जाए 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए तो वह बड़ी मस्ती में देखेगा, लेकिन अगर किताब पढ़ने के लिए कहा जाए तो 10 मिनट के अंदर ही उसको नींद आने लगती है, जबकि उसको पता है कि इस किताब में जिंदगी में सफल होने के सूत्र हैं, और यह भी कि इस किताब को पढ़ने से उसको जिंदगी में सफल होने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन नहीं, किताब पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ जाएगी। इसलिए सफल होने के लिए आपको अपने साथ थोड़ा सा कठोर तो होना ही होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा हासिल करना है जो आज तक आपने नहीं किया, तो आपको कुछ ऐसे काम भी करने होंगे जो आपने आज तक नहीं किए। बस आज के लिए इतना ही, मिलता रहूंगा आपसे FM 90.0 पर, ताकि आपके दिल को छू सकूं। हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: You are listening FM 90.0 megahertz, Radio Vitasta, Hum Safar Zindagi Ka. Ambala Kent's first community radio, licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर विदस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: ही दालच में एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन्स को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: تُہۍ چھُو بوزان 90.0 ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔
1: آنکھوں میں

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब बालक एंड सी हमारी प्रसारण।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, मींस के अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से, इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है, जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं, तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है।
0: जी।
1: तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरोइंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरोइंग होती है। और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रक्त इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर प्लेटलेट्स डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते।
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है,
0: जी,
1: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात को रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर रहता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल्स में एनरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं, कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है।
0: जी।
1: जैसे अगर हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जाम्पल फैटी फूड है उस पर कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन एटलीस्ट 4-5 times अ डे वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाई की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये है आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक डेथ का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और पैरालिसिस सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: पेश है प्रोग्राम शामे गजल एपिसोड 2, कलाम भारती रैना। पेश कर रहे हैं आरजे किरनी।
2: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। पेश है प्रोग्राम शामे गजल। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी है, जो ओरिजिनली रैनावारी श्रीनगर कश्मीर की बाशिंदा है, अब जम्मू में कयाम पजीद है। उनकी लिखी गई गजलों को अपनी आवाज से सजाया है कश्मीर के मायोनाज गुलोकार कैसर निजामी साहब और सुमन पंडिता जी ने। जिंदगी की कहानी में हर पल एक नया रंग है, हम ना रहे तेरे तलबगार पर तू हमेशा संग है, हर मोड़ पर नया सफर साथ संग चले।

गुर्बत की राह में मजबूर हैं हम, जिंदगी के सितम से बेखबर हैं हम, पर दिल में उम्मीद की एक किरण है कि मुश्किल को सहकर अपनी मंजिल पा लेंगे।

कुदरत की तराशी गजलों में, दिल के हर धड़कन में बसी कहानी। लोग समझते हैं कुछ नादान हूँ मैं, मेरी शायरी में छुपी है एक मुस्कुराहट रवानी।

0: गजल हूँ।
1: जिंदगी के कुछ पल हैं ऐसे जिनमें बसी है मीठी मीठी यादें, दिल को छू जाती है वो मीठी से यादों का अफसाना।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल। उम्मीद करते हैं आपको ये गजलों का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक 7056413010 पर भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल एपिसोड 2। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी था। पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, हिदायतकार भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

राम सरगम में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। आज हम लेकर आए हैं एक अनोखा सफर फिल्मों की दुनिया से। ये है संगीत का सफर जो आपके दिल को छू जाएगा, वो हसीन लम्हे जो हमेशा याद रहेंगे। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हम लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया गीत। संगीत खयाम का है, बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और फिल्म का नाम है त्रिशूल।

एक पल सुंदर है, कल क्या हो किसको ये खबर है, लंबा

अभी आप सब सुन रहे थे फिल्म सिलसिला का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया था शिव हरि ने और बोल लिखे थे हसन कमल ने। लीजिए अब सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है सच्चाई और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

प्रोग्राम का अगला नगमा आप सबकी नजर फिल्म दूसरा आदमी से। म्यूजिक दिया है राजेश रोशन ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और अपनी मधुर आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनाते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे स्वर दिए हैं किशोर और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है कल्याण जी आनंद जी का संगीत दिया हुआ गाना, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है प्रोफेसर प्यारेलाल और जिसे लिखा है राजेंद्र किशन ने।

0: प्रोग्राम की अगली पेशकश एक महल हो सपनों का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। इस गाने को संगीत से सजाया है रवि ने और इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।
1: एक महल

आनंद बख्शी का लिखा सुंदर गाना मिस्टर नटवरलाल फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

अब पेश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अजनबी से, जिसे म्यूजिक दिया है आर डी बर्मन ने।

फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात।

अब पेश है लावारिस फिल्म का गाना, जिसके बोल लिखे हैं अनजान ने, म्यूजिक दिया है कल्याण जी, आनंद जी ने, और इस गाने को गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 3, जो आधारित था पुराने फिल्मी गीतों पर। पेश किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये सफर है फिल्मी गीतों का। तय करेंगे आप अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। नमस्कार, आदाब। सहर होते ही कोई हो गया रुखसत गले मिलकर, फसाने रात की कहती रही टूटी हुई चूड़ी।

दर्द जगता है अक्सर दिल के इस नाजुक कोने में, जहां कभी प्यार पलता था सिर्फ तुम्हारे लिए। जहां से तुम्हारा गुजर हुआ, वहां के रास्तों को तुमने महकाया, वहां की वीरानी को गुलजार किया, और वहां के फासलों को तुम्ही ने मिटाया। तुम्ही ने दर्द दिया और तुम्ही ने दवा। अब यहां हमारे तन्हाइयां पलती हैं, थाम लेती हैं रुसवाइयां दामन, और तुम्हारी याद में ये आंखें अश्कबार रहती हैं। जगता है दर्द अक्सर इस

फिर बरसता, भीग जाती ये खामोश चिनार, शायद बोल भी पड़ते, मुस्कुराते भी, और अपनी चुप्पी तोड़ लेते। मैं इनसे लिपटता, अब की बार इनके सायों में उम्र गुजारता, शायद गुजरे वो पल याद आते जो कभी भुलाए नहीं जाते। क्यों न बिस्तर की सिलवटों को ख्वाबों का पोशाक पहनाए, शायद फिर ये बादल टुकड़े टुकड़े हो जाए।

क्यों लगता है बरसों से शनासाई है, ये मखमली मौसम बेताब है तुम्हारे पैरों की चुभन के लिए। बदलते रुत सरगोशियां करती हवाएं, तुम्हारे दुपट्टे की खुशबू अब एहसास है मेरा। क्या तुम्हें याद है तपती दोपहरी के दामन में, यहां की फिजाओं को इन पानियों में हम बहाया करते थे, इन सूफियाना धुनों में आवाज से आवाज मिलाना, यही हमारी

ये मौसम है तुम्हारी यादों का, सावन का ही महीना था जब तुम लौट आए थे नंगे पांव, भीग चुके थे तुम्हारे कब कपाते होंठ, चेहरे की रौनक और सादगी से भरा कदे आदम जिस्म, धड़कनें उदासी में लिपटी हुई थी, शायद अपना दर्द बयां कर रही थी।

मेरी पनाहगाहों में जो तुम ठहरते ता उम्र, शायद तुम्हारी यादों का मौसम खिल उठता मौसमी बहार की तरह।

जिक्र तेरा ही होता है। इन पानियों में लहरें उठती तो हैं पर अक्स बिखरती नहीं। ये साहिल रहते हैं बेताब इन पानियों को छूने के लिए। यहां शाम होते होते मुरझा गए अब ये भीगे मौसम और छिप गए चुप हो गए बुलबुल। इन काली खामोश घटाओं ने घेरा है सितारों को चांद को मेरी परछाई को और तुम्हारी मुस्कान।

आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। कोशिश करते हैं कि हम वही कार्यक्रम प्रसारित करें जो रखे हैं आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:40। रेडियो वितरसा 90.0 FM के सभी प्यारे और अजीज श्रोताओं को भारत सोपोरी का दिल से बहुत सारा प्यार और नमस्कार। दिन भर हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज का हमारा ये प्रसारण आपको पसंद आया होगा और हमारी बातों ने आपके दिन को थोड़ा और खास बनाया होगा। अब बारी है आज के प्रसारण को विराम देने की, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर करते हैं चर्चा इतिहास के पन्नों में आज के खास दिन की। आज के दिन यानी 30 अगस्त 1983 को भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। इसी दिन भारत का पहला बहुउद्देश्य उपग्रह इनसेट 1B सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। यह उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसने देश में दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम विज्ञान तीनों क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला दिए। इनसेट 1B के आने से पहले भारत में टीवी प्रसारण सीमित क्षेत्रों तक ही पहुंच पाता था, लेकिन इस उपग्रह की मदद से दूरदर्शन का प्रसारण देश के कोने कोने तक पहुंचता है और अब संभव हुआ है। इसके साथ ही मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने के भी ये उपग्रह अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है, जिससे किसानों और आम जनता दोनों को बड़ा लाभ मिला है। ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक सोच से कोई भी राष्ट्र आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। आज भी भारत चंद्रमा और मंगल तक अपने यान भेज चुका है, तो इसकी नींव में इसी तरह के प्रारंभिक प्रयासों और उपलब्धियों का बड़ा योगदान रहा है। यह था आज का विषय। और तो आइए भारत के इस गौरवशाली वैज्ञानिक ऐतिहासिक समय को नमन करते हुए वितस्ता के नाम एक शेर के साथ आज के प्रसारण को देता हूं विराम। और ये चार पंक्तियां आप सभी का नाम, आज की पंक्तियां यूं है, वितस्ता की धारा जब भी अपनी कहानी कहती है, वितस्ता की धारा जब भी अपनी कहानी कहती है, हर लहर में एक नया इतिहास बहाती है, हर लहर में एक नया इतिहास बहती है। धरती से जब जो कोई सपना अंबर छूता है, धरती से जब कोई सपना अंबर छूता है, वतन की माटी का हर जर्रा फक्र से झूमता है। वक्त की माटी का हर जर्रा फक्र से झूमता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी पंक्तियां आज सभी के लिए और आज का टॉपिक। और जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 31 अगस्त 2026 सोमवार यानी कल इस महीने का अंतिम दिन है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर। वंदे मातरम से हम करेंगे शुरुआत, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत। 7:05 पर सोमवार को आप सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। कल होगा एपिसोड 9। हमारे साथ होंगे अंकुर अरोरा और हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में, पेश करेंगे भारत सोपोरी। और 8:30 बजे सकारात्मक कहानियों का समय। और कल एपिसोड 28 होगा गलतियों से कितना सीखें, पेश करेंगे नरेश शर्मा। और 9:30 बजे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा एपिसोड 4, शीर्षक होगा समर्पण। और 10:10 पर गुप्तगु कार्यक्रम, शिव किरमज से बातचीत होगी, आप सुन पाएंगे

FM 90.0 MHz रेडियो भी तस्तात पर। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7 बजे होगा कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला। एपिसोड होगा आधारित माधवी गणवीर की गजलों और कविताओं पर, पेश करेंगे भारत सोपोरी। और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। और कल की कड़ी है रात की चुप्पी। ये था विवरण हमारे कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई बातों और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और रेडियो वितस्ता से जुड़े रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 पर, मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक, जहां हर सुर हर विचार वितस्ता की लहरों की तरह बहता ही रहता है। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।